ते पाकिस्तान जे अहम कामयाबी भारतीय कोशिशू नाकाब जनीवा में गडियल कौमन जे इंसानी हकन जे काउंसिल में पीण जे साफ पाणी ऐं सफ़ाई सुसराई बाबति ठहराउ मंज़ूर पाकिस्तान जे सफ़ारती कोशन सबबि पहिरियों भेरो ठहराउ में पाणीअ जी सरहद पार सहकार जो वाज़े हवालो शामिल जर्मनी ऐं स्पेन पारां पेश ठहराउ इंसानी हक़नि वारे काउंसिल जे 47 मेंबरनि मुल्कनि ठहराउ इतफ़ाक़ राह सां मंज़ूर करे वरितो पाकिस्तान तरफ़ां फर्स्ट सेक्रेटरी अदील खोकर ख़िताबु कंदे चयो त जिते पाणी गडि॒यल हुजे उते ज़िमेवारियूं बि गडि॒यल हूंदियूं आहिनि गडि॒यल पाणीअ ते सहकार पाड़ेसरी मुल्कनि जे विच में अहसान या रियायत न पर गडि॒यल ज़िमेवारी आहे मथां वहकिरे वारे दरियाहनि जे मुल्क खे पाणी सियासी दबाउ जे हथियार तौरु इस्तेमालु करण जो हक़ु नाहे पाणीअ खे गडि॒यल ज़िमेवारीअ जे उसूलनि तहत इस्तेमालु कयो वञे

0: स्मृति से ये धर्मों के और लॉन्ग मार्चेस के भयानक साए हैं दोबारा नमोदार हो रहे हैं। नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो उसको इंशाल्लाह नहीं होने देंगे, किसी जुर्म नहीं होने देंगे। कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा इंशाल्लाह, हमारी जिम्मेदारी है उसको इंशाल्लाह हम हर तरीके से उसको हम इंशाल्लाह उसको इंश्योर करेंगे। मैं भी उनको कहूँगा कि आप अपनी रोज के नाकों को क्या आपकी ये कार्रवाई पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाएगी या फायदा पहुँचाएगी, ये पूरी कौन इस बात से आगा है। मैं अभी भी आपको ये गुजारिश करूँगा कि आप रोज के नाकों में इस साल आप अपनी लॉन्ग मार्च को धरने को आप इसको खत्म करें, और खत्म करेंगे तो हम यकीन आप जाकर बैठेंगे, बैठ के बात करेंगे।
1: वजीर आजम शहबाज शरीफ जी पीटीआई के गालन लाए मशरूत आज लॉन्ग मार्च ए धरनो खत्म करण जो शर्त रखी छड़ियो। इस्लामाबाद में तकरीब खिताब कंदे वजीर आजम शहबाज शरीफ चयो त धरने ए लॉन्ग मार्च वारी सियासत जो पहरियो निशानो मईशत हुंदी आए। हुकूमत नेक नेतीअ सां पीटीआई सां गालियूं कयूं, शाह मुआशी फीते खे बीहर रोकण मुल्क दुश्मनी नाहे। पीटीआई वारा होश खां कम वठण, लॉन्ग मार्च खत्म कनि त बीहर गालियूं थी सघनि थियूं। सदर आसिफ अली ज़रदारीअ सां वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जी मुलाक़ात। पीटीआई जे लॉन्ग मार्च सबबि पैदा थियल सूरत हाल समेत मुल्क जे मजमूई सियासी ऐं सिक्योरिटी सूरत हाल ते ॻाल्हियूं। कंहिं बि आइनी ऐं कानूनी क़दम खां पहिरियां मुशावरत जो अमल जारी रखण ते इतफ़ाक़ ज़रियनि मूजिबि सदर ऐं वज़ीर आज़म में मुलाक़ात गॾियल क़ौमुनि जे सेक्रेटरी जनरल खे आला तरीन सिविल एवार्ड ॾियण वारी तक़रीब खां पोइ मुलाक़ात थी, जंहिंमें पीटीआई सां ॻाल्हियूं कंदड़ कमेटीअ जे मेंबरनि ब्रीफिंग ॾिनी। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई अपोजिशन टीम खे ॻाल्हियुनि वारी हुकूमती आछ जो मुसबत जवाब ॾियण जी हिदायत करे छॾी। बानीअ सां मुलाक़ात ॻाल्हियुनि जे बहालीअ लाइ पहिरियों शर्त बरक़रार। बैरिस्टर गौर चयो आहे त असांजो को बि मुतालबो गैर आइनी न हो, ॻाल्हियुनि खे बि लॉन्ग मार्च सां मशरूत न कयो वञे, चेन टुटणी न घुर्जे, वेहण सां ई हल निकरंदो। असद केसर चयो त संगीन ख़दशनि बावजूद हुकूमत सां ॻाल्हाइण लाइ तयार आहियूं।
2: KTN News
3: brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream, munfarid aur jadid formulation ke sath aapko gora banaye. Super White Oil Free Beauty Cream ke natural minerals jo de bina chip chip ke chehre par nikhar sirf chand dino mein. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
4: Finally ab thoda me time banta hai. Ha to aur kya, sara din function mein busy rahi hain hum. Ab skin ki care kare, kal barat pe bhi jana hai. Tum strawberry wali, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
5: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
6: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
5: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी, एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
6: अच्छा, वेरियंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

बार बार पेशाब जो अचण, अचानक वजन घट थी वञण, बुख घणी लगण। मथे ते दबा हुजण, हथन ऐं पेरनि जो सड़ण, सॼे जिस्म में बाहि वांगुर महसूस थियण, कमज़ोरी महसूस थियण, पेरनि में फट थियण, टंगुनि में गिढियूं पवण।

0: कंध जो गोरो थियण वधीक मालूमात
1: मन में खोट हूंदी आहे उहो हमेशह मायूस वेगाणो ऐं अकेलो रहे थो उन जो ज़हन हमेशह गैर मुतवाज़न रहे थो हू बि जिते बाहि ॿरंदी आहे उते कहिड़ा गुल फुटंदा

जी साईं मुंहिंजा चवंदा आहिनि त नीच नौकरी खेती सरसेती वधंदड़ वापारु सो इन मां हिकिड़ो मक़सदु हिकिड़ा हक़ीक़त ज़ाहिर थिए पई त असां जेके तालीम याफ़्ता

असांजा जेके नौजवान आहिनि उहे कोशिशि कंदा आहिनि त असांखे नौकिरी मिले, ऐं असां जेकॾहिं का मैट्रिक पास कईसीं या एफ एस सी पास कईसीं

अॼु जे समय नए प्रोग्राम रोशन सुबुह में असां अॼु अव्हां खां कोई बि सवाल कोन कयो आहे ऐं अॼु तव्हांजा बिल्कुलु नाला हलाईंदासीं एस एम एस ज़रिए बि फेसबुक ज़रिए बि ऐं लाइव कॉल ज़रिए बि तव्हांजा नाला ज़रूरु हलाईंदासीं। परेशान न थिजो, तव्हांजा नाला हलाईंदासीं ऐं हिन वक़्तु हलंदासीं न्यूज़ ब्रेक ऐं कमर्शल ब्रेक जी तरफ़ वरी वापसि ईंदासीं। कॾहिं बि न वञिजो।

0: स्ट्रक्चर के भयानक साए हैं तो दोबारा नमोदार हो रहे हैं।
1: नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो इसको हम इंशाल्लाह नहीं होने देंगे, किसी जरूरत नहीं होने देंगे।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। Super White Oil Free Beauty Cream के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
4: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
5: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
6: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
5: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। And I am using vitamin C cream for best and glowing clean skin.
4: Achha, variants sabke different, lekin choice sabki hai.
7: Super White!
8: हर चप्पा हर गोशा
9: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
8: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आहिनि, आईंदा जा मामार आहिनि ऐं वक़्त जा बादशाह आहिनि। असां उन्हनि जी हिफ़ाज़त बि कयूं था, उन्हनि जी असां तालीम जे तरफ़ बि असां उन जो तवजो ॾियूं त ॿारनि जी जेका नशोनुमा आहे, उन्हनि जी खाध खुराक आहे, उन्हनि जी परवरिश आहे, उन्हनि जो लटो कपिड़ो आहे, असां उन ते तवजो ॾींदासीं त हुननि जो ज़हन दिमाग़ उहो बहितर थींदो। पर असांजा उहे ॿार अफ़सोस सां चवणो पए थो जंहिंजी उमिरि तालीम जी आहे, उहे अॼु असांजा होटलनि ते पंहिंजो बहिरा आहिनि, चांहि खपाईंदे ॾिसूं था ऐं हॉस्पिटलनि में बिस्किट केक खपाईंदे ॾिसूं पिया, लटड़ा मेरा ऐं उन जा हाल ख़राब। अफ़सोस उन्हनि वालदेन ते जेके पंहिंजी महिनत करण जे बजाए नंढड़नि ॿारनि खे, गुलाब जे गुल जहिड़नि ॿारनि खे किन ग्रेजुनि में असां ॾिसूं पिया, त जिते हुनखे जेके मिस्त्री आहिनि, मैकेनिक आहिनि, उन्हनि खे पाना पकड़ियूं बि वहाए कढनि पिया। कोशिशि कयो त उहे जेके मिस्त्री आहिनि असांजा, उहे मैकेनिक आहिनि, उहे जेके असांजा जंहिंखे असां उस्ताद बि चवंदा आहियूं, त इहे नंढड़ा ॿार जेके महिनत कनि था, उन जा उहे बच्चा आहिनि, उन जा उहे औलाद वांगुरु आहिनि, त उन्हनि खे ईअं ई ॾिसणु खपे जीअं औलाद खे ॾिसबो आहे, जीअं पंहिंजे घर में पंहिंजे ॿारनि जी नशोनुमा कबी आहे, उनजी परवरिश कबी आहे, खाधे पीते जी, लटनि कपिड़नि जी। त जेकॾहिं को होटल ते बहिरागिरी करे थो, टोकन वठी करे चांहि पहुचाए थो ऐं कहिड़े बि क़िस्म जी नंढड़ो ॿारड़ो महिनत करे थो, जंहिं वटि कमु करे थो, मज़दूरी करे थो, कंहिं बि ऑफिस में हिकिड़ो ऑफिस बॉय आहे, त असां हुन सां अहिड़ो सलूक कयूं जीअं असांजी पंहिंजी औलाद हूंदी आहे। अहिड़े हिसाब सां असां उन्हनि जी जेका परवरिश कंदासीं, असां उनजो ख़्यालु कंदासीं, असां उन्हनि जी शफ़क़त जो हथु रखंदासीं, त असांजा उहे ॿार आईंदा जा अबा आहिनि जंहिंजी तालीम ॾींदासीं, जंहिंजी खाध खुराक कंदासीं, हर लेवल जी असां उन्हनि ॿारनि जी ख़िदमत कंदासीं। पर स्टार्टिंग खां ॿारनि खे जेके असांजे मुल्क पाकिस्तान में पोलियो जा फुड़ा पीआरिया वञनि था ऐं बीमारनि खां बचाव जा टुका लॻाया वञनि था, त असां उन्हनि ते बि तवजो ॾींदासीं त असांजा ॿार कंहिं मुज़ी मर्ज़ खां बची सघंदा, कंहिं बीमारीअ खां बची सघंदा। त असांजी हर लेवल ते हर क़िस्म जी हर नमूने जी असांजी पंहिंजी कोशिशि करणु खपे त असांजा ॿार उहा ई ॻाल्हि त आईंदा जा अबा आहिनि, असांजे पाकिस्तान जा मामार आहिनि, पाकिस्तान जा वक़्त जा हुकुमरान थी सघनि था। उन जी एतिरी ज़हन जी असां कुशादगी कयूं जीअं असांजी जेको आहे सो उहे ॿार असां अॼु आहियूं, असां सुभाणे न हूंदासीं, इहे ॿार हूंदा ऐं मुल्क हूंदो, पाकिस्तान ज़िंदाबाद हूंदो।

तव्हां अच्छनि वारनि खां परेशान आहियो? पेश आहे आर्श क्रीम हेयर कलर। पंहिंजे पसंदीदा रंग सां पंहिंजो अंदाज़ बणायो वधीक दिलकश ऐं वधीक स्टाइलिश। पार्टी हुजे, ऑफिस हुजे या कंहिं ख़ास मौक़े जी तयारी, हर लम्हे पंहिंजो बहितरीन अंदाज़ ज़ाहिर करियो। आर्श क्रीम हेयर कलर सां पंहिंजी खूबसूरती खे ॾियो नओं रंग। गुज़ारियो

जी हाँ, समय ने प्रोग्राम रोशन सुबुह जो वक्त पहुंचे तो पंहिंजे पुॼाणी ते ऐं वरी हयाती रही त इंशाल्लाह ईंदड़ प्रोग्राम में अवां सां मुलाक़ात ज़रूरु थींदी। तेसीं ताईं पंहिंजे मेज़बान नेमतुल्लाह जूणी जो खे ॾींदा इजाज़त। अलाह निगाहबान।

ख़र्च थी रहा आहिनि। सदारती चूंडनि में हिसो वठण बाबति अञा फ़ैसिलो न आहे कयो। तेल जूं क़ीमतूं मिटनि जी चूंडनि खां अॻु दॿाउ जो सबबु बणिजी रहियूं आहिनि। जंग ख़तम करण लाइ ईरान खे यूरेनियम जो रचाव घटाइणो पवंदो। ईरान हेठि में हथियार नथो चाहे त खे 60% यूरेनियम ॿारण जी ज़रूरत छो आहे। अमेरिकी नायब सदर ईरान सां ॻाल्हियूं जारी रखण जी तस्दीक करे छॾी। परॾेही ख़बरू इदारे राइट्स खे इंटरव्यू ॾींदे जे डी वेलस चयो आहे त ईरान जूं एटमी प्रोग्राम महदूद करण वारी सखियूं ख़ातिरियूं काफ़ी न आहिनि। अमेरिका ईरान सां अमली क़दम चाहे थो। अमेरिका मुआदे लाइ तयारु आहे पर ख़बर न आहे ईरान में हतमी फ़ैसिला केरु करे रहियो आहे।

0: सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए Super White Oil Free Beauty Cream के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में A product by Aksa Cosmetics Pakistan
2: Finally अब थोड़ा मी टाइम बनता है हाँ तो और क्या सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम अब स्किन की केयर करें कल बारात पे भी जाना है तुम स्ट्रॉबेरी वाली वो भी सुपर वाइट की ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है तुम कौन सी यूज करती हो
3: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है
2: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम
3: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी And I am using vitamin C cream for best and glowing clean skin.
2: Achha, variants sabke different, lekin choice sabki hai.
4: Super White!
5: Sindh ki ho, to awaaz bhi Sindh ki hai. GAFM 88 Network. GAFM 88 Network. Sindh ki awaaz.

0: Quella che vede.
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज

चाहत से पता करते हैं लोगों के दिलों को, चाहत से पता करते हैं लोगों के दिलों को। हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम। यू आर टूनिंग इनटू योर रेडियो एफएम 88 और साथ ही साथ प्यारा सा चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम से दिल, स्वीट सी हंसी, परफेक्ट पर्सनैलिटी, खुश मिजाज अंदाज, मुझे कहते हैं आरजी रुखसार सिंध की आवाज। हर यू कैसे हैं आप? आई होप सुकी जी जहां जहां भी मौजूद है बिल्कुल चुपचाप सेट कूल एक साथ एकदम स्ट्रांग हेल्थ के साथ मुझे सुन रहे हैं। जहां जहां भी मौजूद है बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद है और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरे पूरे तैयार हैं पूरे पूरे एक बजे तक। आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है जो कि आप सुनते हैं एवरी डे और 11 से लेके 1 बजे तक आपका और मेरा साथ होता है। तो ये साथ आज भी रहेगा पूरे पूरे 1 बजे तक प्रोग्राम में। अगर हम सबसे पहले वक्त की बात करते हैं तो जी वक्त हुआ जाता है 11:16 पाकिस्तान का म्यारी वक्त है, तमाम लोगों की घड़ियों में बज रहा है। और इसके अलावा वो लोग जो कि इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में है, ट्रक में है, रिक्शा में है, कार में है, बाइक पे है, जिस पे भी जा रहे हैं आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी बट लेट द नेवर। अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। खुदा खैरियत मौजूद और तवक्कुल खुदा खैर।

ना तमाम तो लोग जिन लोगों की आज सालगिरह है उनको कहेंगे मैंने मनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे हैप्पी बर्थडे टू यू. उसके अलावा वो लोग जो कि बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून. और वो लोग जो कि लाइफ में कुछ अच्छा कुछ बेटर कुछ बड़ा कुछ यूनिक कुछ अलग कुछ डिफरेंट कर रहे हैं तो विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक. बहुत सारी बेस्ट विशेस आप लोगों के लिए कि आप अपने हर काम में कामयाब होते रहें. जी आमीन. इसके अलावा मेरी आवाज जिन जिन गलियों और शोबारों शहरों और शराहों वादियों और पहाड़ों दरियाओं में गुजारों घरों और बाजारों छोटी बड़ी कारों मेरे परसारों या करोड़ों हजारों में सुनी जा रही है. तमाम सुनने वालों को चाहने वालों को मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे मरहबन बेगम अहलन वसहलन मरहबा बखैर आगले जी आया नू सदसुल्ला बोंजोर शाओ नी हाओ एंड वेलकम इनटू जिंदगी गुलजार है.

हमेशा की तरह बहुत कुछ है सुनने को, सुनाने को, समझने को, समझाने को, सीखने को, सिखाने को, बोलने को, बुलवाने को, और वो सारी बातें जो कि आप मुझसे करना चाहते हैं वो सारी बातें मैं आपसे करूंगी. लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना, और इस गाने के साथ मैं आपको बताऊंगी कि हम प्रोग्राम में क्या करने वाले हैं. स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है.

प्रोग्राम में हम आगे चलेंगे और प्रोग्राम में आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं तीन तरीके कार से. आप लोग मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं. सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, उसको सेंड कीजिए 888 1. कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज होगा GFM88 के नाम से, जो कि फेसबुक के ऊपर आपको मिलेगा. और जी आप उसके नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, यानी कि जो पोस्ट आपको मिलेगी जिंदगी गुलजार है कि उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं. इसके अलावा आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं. कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488. साथ हम नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट सॉन्ग हम प्ले करेंगे और नेक्स्ट सॉन्ग जो कि बहुत अच्छा होगा, इसको हम प्ले करेंगे रिमिक्स वर्जन में. और इसी के साथ हम एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की जानेब भी जाएंगे, तो आपने कहीं नहीं जाना, मेरा साथ देना है क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है.

0: It's 11:30 AM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. नाए आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: It's time to commercial break.
3: अरे नहीं, खुश और बीरोनो की स्किन, खड़े इन्हें जलाए छा,
4: damage एक डल स्किन के कहो, आउ

0: छा अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: अब थोड़ा मी टाइम बनता है हाँ तो और क्या सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम अब स्किन की केयर करें कल बारात पे भी जाना है तुम स्ट्रॉबेरी वाली वो भी सुपर वाइट की ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है तुम कौन सी यूज करती हो
2: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है
3: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम
2: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन
1: अच्छा वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है
4: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज
5: ॾाढो सुठो
4: जी एफ एम 88 नेटवर्क
6: सिंध की आवाज़

0: Ayrıca welcome back once again. आप सुन रहे हैं यूज़न की गुलजार है, मुझे कहते हैं आज रुखसार, आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है और आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं जो प्रोग्राम में तीन तरीके कार से आप लोग मुझे अब कॉल भी कर सकते हैं। हमारा सेगमेंट हो गया जो सुर लगाओ गाना सुनाओ, और सुर लगाओ गाना सुनाओ में हम आप लोगों से सुनेंगे एक अदद गाना, तो गाना सुनाने के लिए और कॉल पे आने के लिए आप लोगों को कॉल मिलानी होगी, तो कॉल कीजिएगा 03000113488 के ऊपर, इसके ऊपर कॉल करेंगे तो आप कॉल लगा पाएंगे, कॉल मिला पाएंगे और मुझसे बात कर पाएंगे और एक अच्छा सा गाना सुना पाएंगे। और इसके साथ साथ जी जो डेली बेसिस पे कॉल करते हैं तो डेली सैमसंग कॉलर्स आर नॉट अलाउड, इस बात का खास ख्याल रखते हुए आप लोगों ने कॉल करनी है। और साथ साथ आप लोग मुझे 8881 पे भी मैसेजेस कर सकते हैं, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, हमारे पेज के ऊपर आपको पोस्ट मिलती है जिंदगी गुलजार है कि इसके नीचे आप लोग कॉमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं। इसके साथ साथ लाइन पे मौजूद है, चेक करेंगे गाना कहाँ से। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? हाफिज लकमीर, आपकी कल कॉल लगी थी लेकिन आज लगा ली है दोबारा, तो मुझे गाना सुना दें जल्दी से और फिर अगले दो दिन तक कॉल नहीं लगानी, ठीक है? सॉरी आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन आ रहा है, प्लीज सही से बात करें, मतलब सही जगह पे जाके बात करें जी, काफी डिस्टॉर्शन के साथ आ रही है, मुझे बताएं कि गाना कौन सा सुनाएंगे?
1: ये गाना सुनाऊंगा वो प्ले करना।
0: ओके सुनाएं।
1: ये महबूब तो दिस मुखदर मोहजो हासिल भी न थे बदनाम बुझा, महबूब तो दिस मुखदर मोहजो ये जाना है।
0: ओके, किसी को डेडिकेशन?
1: और मुस्तान साहिबा और जो भी सुन रहे हैं सबको सलाम।
0: ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज जी। और ये थे कॉलर 03000113488 के ऊपर आप लोग कॉल कर सकते हैं मुझे। नेक्स्ट कॉलर, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: सलाम
0: जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
2: हाफिज
0: सावर भाई, कैसे? ठीक ठाक
2: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: प्रोग्राम सुन रहे हैं?
2: ये प्रोग्राम सुन
0: रहा हूँ। ओके, गाना सुनाएंगे?
2: गाना
0: सुना, रोने धोने वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है?
2: नहीं नहीं,
0: सुना दें।
1: मशरत है मीनाया,
0: मशरत है मीनाया, कुर्ब से आता दूर। ओके, किसी को डेडिकेशन है?
2: Oh,
0: okay, Allah Hafiz, thank you so much. Bye.

मजीद और बहुत सारी लाइव कॉल्स को एंटरटेन करेंगे. सो हियर कम्स अ सॉन्ग जो कि हमें भाई ने सुना दिया है, सुनते और आगे चलते हैं.

0: मैक्स कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? ओके, प्रोग्राम सुन रहे
1: हैं? प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है।
0: पहली दफा कॉल की है
1: ये? काफी दिनों से बात की है, लेकिन पहले आपसे बात हुई थी प्रोग्राम में।
0: ओके,
1: ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, सरकार चल रहा है।
0: ओके, मुझे बताएं कि गाना सुनाएंगे?
1: हाँ जी, गाना आपको सुनाते हैं। ये गाना है कि संभाले कर को जानो यो अजाबी।
0: सॉरी,
1: ये जो फोन आपको बंदा,
0: कौन सा गाना है
1: ये? ये है संभाले कर को जानो बतानी दर प्यारा।
0: और गाना किस सिंगर का है
1: ये?
0: किस सिंगर का गाना है ये?
1: ये
0: सॉरी, आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन है।
1: आवाज आ रहा है
0: जी? अब आ रही है, अब बताइएगा।
1: मैंने कहा ये सिंगर का नाम मुझे नहीं पता।
0: चलो मैं सर्च करती हूँ उसे। और कुछ कहना चाहेंगे?
1: जो भी दोस्त सुन रहे हैं, ये सॉन्ग जरूर चलाना।
0: ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। और इसी के साथ हम चलते हैं आगे। हम प्ले कर रहे हैं एक और ब्यूटीफुल सॉन्ग, और सॉन्ग के साथ हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के मैसेजेस और कमेंट्स को इंक्लूड करें, और उसके साथ हम आगे चल रहे हैं। स्टे ट्यून्ड।

0: Okay, जी beautiful song और song के साथ साथ एक और कॉलर लाइन पे मौजूद है. Hello.
1: Assalamualaikum.
0: वालेकुम अस्सलाम सरदर्द, कैसी हो?
1: आप बताइए.
0: मैं बहुत अच्छी हूँ. मुझे बताओ कि प्रोग्राम सुन रही हो? ऐसे थोड़ी ना कॉल करती है. अच्छा मुझे बताओ कि गाना सुनाना है?
1: जी सुनाए.
0: तो सुना दे. अच्छा सा रोने धोने वाला बिल्कुल नहीं. ओके लेकिन ये तो बॉलीवुड कंटेंट है, ये कैसे प्ले करूं मैं?
1: अरे मुझे पता नहीं चला कि सर.
0: चलो मैं अपनी तरफ से कोई प्ले कर दूं अच्छा सा.
1: हाँ प्ले कर दो, मुझे डेडिकेशन.
0: चले मैं प्ले कर देती हूँ. किसको डेडिकेट करेंगे?
1: मुझे.
0: मुझे
1: डेडिकेट कर
0: दो. अच्छा आपको कर दूं. चले मैं आपको कर देती हूँ.
1: अच्छा दूसरे वाला सेगमेंट पे रखिए ना
0: जी. अंटुस्टर वाला सेगमेंट आज करेंगे हम. और क्या करेंगे? हाँ आज करेंगे हम. हरा भरा पाकिस्तान की बात करेंगे. ठीक है. थैंक यू सो मच सरदर्द. अपना बहुत सारा ख्याल रखो. अल्लाह हाफिज जी. थैंक यू. इस वक्त हमें बहुत सारे मैसेजेस रिसीव होते जा रहे हैं. इस वक्त हमारे साथ साथ मौजूद हैं नजीर धारी जो, वहीद भाइयों, शमन भाइयों, मुमताज भाइयों और दिलशाद भाइयों हमें सुन रहे हैं. आप तमाम लोगों को हम खुश आमदी कहते हैं जी प्रोग्राम में. आप हमें सुन रहे हैं इतने गौर से, इतने शौक से. नजीर धारी जो, वहीद भाइयों, शमन भाइयों, मुमताज भाइयों और दिलशाद भाइयों, थैंक यू सो मच एंड वेलकम.

आगे जी और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं और इसके साथ साथ जी मुझे जो स्पेशल डेडिकेशन आई है, असल में उन्होंने करनी है रिकॉर्डिंग, सो हम एक बार उनका फिर से नाम ले लेंगे जी इस

0: Express PM. This line check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super Vibes Rice Collagen Beauty Cream.
5: रोकणो पवंदो केपीके जी आवाम जो दहशतगर्दी खिलाफ़ कुर्बानियूं सारा जोगियूं आहिनि. ख़्वाहिश आहे त केपीके बि मुल्क जे ॿियनि सूबनि जीअं तरक़ी करे. वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जूं वफ़ाक़ी वज़ीर अमीर मक़ाम सां मुलाक़ात दौरान ॻाल्हियूं. वफ़ाक़ी वज़ीर अमीर मक़ाम कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान ऐं ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जी सूरत हाल ते वज़ीर आज़म खे ब्रीफिंग ॾिनी. वज़ीर आज़म जे कश्मीर ऐं गिलगित बल्तिस्तान में अवामी भलाई वारा क़दम जारी रखण जी हिदायत. सिक्योरिटी फोर्सिस जूं बेखैबर पख़्तूनख़्वा ऐं बलूचिस्तान में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कार्रवायूं जारी. 18 दहशतगर्द मारिजी विया. सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि केपीके जे इलाइक़े उत्तर वज़ीरिस्तान में ख़ारजी दहशतगर्दनि जे थाकनि खे निशानो बणायो वियो. 13 दहशतगर्द जहनुम भेड़ा बलूचिस्तान जे इलाइक़े मस्तूम कार्रवाई दौरान दहशतगर्द मारिजी विया. बारूदी मवाद ऐं हथियार रखियो वियो आहे. सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं वफ़ाक़ी यूरो वज़ीर मोहसिन नक़वी पारां कामयाब ऑपरेशन ते सिक्योरिटी फोर्सिस खे भेटा पेश कई वई. जमी हुसैन पारां रियाज़ जे किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऐं अबाह जे एयरपोर्ट खे मिज़ाइल ज़रिए निशानो बणाइण जी दावा. हुसी वेड़ाकनि मूजिबि सऊदी जे खमीस मुश्तरी बि एयरबेस खे निशानो बणायो आहे. सऊदी अरब हुसैन जे हमलनि जी तसदीक न कई. रियाज़ जे ॾखण में मिज़ाइल

वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की सदारत हेठ सऊदी काबीना जो इजलास यमन के आइनी हुकूमत से सहकार जारी रखने वाले अजम जो वर्जाओ काबीना इजलास में खिते समेत आलमी सूरत जो जायजो वरतो वो। मके दिफाई माहदे की कमेटी इजलास के नतीजन की साराह खिते में मसलन के हल लाए सफारतकारी से जोर दिनों वो। अमेरिका ईरान से जंग के खात्मे ला यूरेनियम जो रचाव घटाने जो शर्त रखी छो। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस है तो वॉशिंगटन ईरानी सदर ए परदेही वजीर से राबते में है। जंग के खात्मे ला यूरेनियम जो रचाव घटाने वारा वायदा काफी ना। तेहरान के यूरेनियम के रचाव में वाजे घटाई करनी पवंदी।

0: जो प्यार सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, एक लिविंग सिस्टम है। अगर आपको वो जाहिर सी बात है सनलाइट यूज करता है, ट्रांसपायरेशन के जरिए पानी एटमॉस्फेयर में वो रिलीज करता है, उसे बारिशें होती हैं तो शेड क्रिएट करता है, तो आसपास के जो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट का हिस्सा बन जाता है, तो वो आपकी एक सोच को डेवलप करने में बहुत किरदार अदा करता है। और अगर एक छोटी सी सोच हर इंसान के अंदर आ जाए तो वो मिलकर पूरे इन्वायरमेंट को आखिर में चेंज कर सकता है।
1: ओके जी, तो मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का मौसम और माहौल बहुत मुख्तलिफ है। आम आदमी अपने घर, छत और बालकनी या गली या दुकान से माहौल के लिए क्या अमली शुरुआत कर सकता है पौधों को लेकर?
0: बिल्कुल, मैं आमतौर पर यही कहता हूँ कि पहला काम प्लांट खरीदना नहीं है, बल्कि आपको उस जगह को समझना या पढ़ने की कोशिश करना है कि जहाँ पे आपने ये सब काम करना है। देखिए, हम देखते हैं कि धूप कितने घंटे आती है, हवा का रुख क्या है, गर्मी कहाँ ज्यादा कलेक्ट होती है, पानी की अवेलेबिलिटी उसमें क्या है, फिर उसका ड्रेनेज सिस्टम क्या है, तो फिर उस जगह के मुताबिक हम प्लांट को चूज करते हैं। छोटी बालकनी है तो कंटेनर या पॉट्स में हम जो धूप वाली जगह पर सूटेबल प्लांट्स को रख सकते हैं। क्लाइंबर जैसे हम बेलें जिनको कहते हैं वो हम लगा सकते हैं छोटे बड़े कंटेनर में। तो पानी बचाने के कभी मुमकिन तरीका है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम अपनी बैल्कनी यूज कर रहे हैं तो उसमें फिर हमारी बैल्कनी को भी पानी के सीपेज की वजह से नुकसान हो सकता है। तो हम देखते हैं कि हमने कितना पानी और किस वक्त पानी प्लांट्स को देना है ताकि उनकी जरूरियात भी पूरी हो और हमारा जो मकसद है एक एनवायरनमेंट को बेटर करने का वो भी हमारा पूरा हो जाए।
1: बिल्कुल जी। अच्छा, हमें ये भी आप बताइएगा कि साथ साथ मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि माइक्रो क्लाइमेट क्या होता है और पौधे, साया और सब्जा हमारे आसपास के छोटे माहौल को किस तरह बेहतर बना सकते हैं?
0: जी, माइक्रो क्लाइमेट सादा अल्फाज में मैं आपको एक बता सकता हूँ कि छोटी सी जगह पर आपका मौसम कैसा है, इसको माइक्रो क्लाइमेट कहते हैं। टेक्निकली तौर पर हम टेम्परेचर के साथ ह्यूमिडिटी, हवा और सनलाइट या रेडिएंट हीट को भी देखते हैं कि उस एरिया में या उस छोटी सी जगह में कितना इन चीजों का असर है। अगर आप एक कंक्रीट की दीवार के पास धूप में अगर खड़े हों और फिर घने दरख्त के नीचे अगर आप चले जाएं तो आपको दोनों जगह पर वेदर जो है और टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ मिलेगा। तो प्लांट दो इम्पोर्टेंट काम करता है, पहला शेड, फिर उस जिससे सरफेस डायरेक्ट सनलाइट से बचाती है, और दूसरा जो है ट्रांसपायरेशन। यानी ट्रांसपायरेशन का मतलब है लीव्स के थ्रू जो है वो हमारा लीव्स के थ्रू पानी जो है वो एनवायरनमेंट में जाता है, तो वो एक पूरा माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट करता है जिससे ना सिर्फ गर्मी कम होती है और जो है माहौल बहुत हमें कंफर्टेबल महसूस होता है।
1: अच्छा, आप हमें बताइए क्या हर इलाके में एक ही किस्म का पौधा लगाना सही है?
0: नहीं, हॉर्टिकल्चर का बहुत इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है कि राइट प्लांट राइट प्लेस। पाकिस्तान में कोस्टल एरियाज हैं, एरिड एरियाज हैं, यानी हमारे पास मैदानी एरियाज हैं, पहाड़ी इलाके हैं, इसके अलावा सब ट्रॉपिकल है, फिर हमारे पास जो नॉर्दर्न एरियाज में जाहिर सी बात है स्नोफॉल वगैरह होती है, तो हमारे पास बहुत अच्छा जो है ना इन्वायरमेंट है, हर तरह का इन्वायरमेंट है। हम प्लांट सेलेक्ट करते वक्त सिर्फ उसकी खूबसूरती नहीं देखते हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट ये बात मैं कह रहा हूँ, उसकी टेम्परेचर टॉलरेंस देखते हैं कि अगर वो हम मुल्तान में लगा रहे हैं या कराची में लगा रहे हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, या सिंध में लगा रहे हैं तो पानी और टेम्परेचर वगैरह देखते हैं, सनलाइट देखते हैं, फिर सॉइल टाइप क्या है, हमारी मिट्टी की किस्म क्या है। फिर जाहिर सी बात है हम यहाँ पर बात क्रॉप्स की नहीं कर रहे, तो जो शेडी प्लांट्स हैं या जो माहौल को खूबसूरत बनाने वाले प्लांट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर हम अपना इलाका भी देखते हैं कि उसमें प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है या नहीं है, तो उसमें कौन सा प्रॉपर प्लांट हमें लगाना चाहिए। कि एक ट्री लगाते वक्त हम ये भी हमें सोचना होता है कि 10 साल के बाद उसकी कैनोपी यानी उसका जो एरिया है पत्तों का और रूट्स कहाँ होंगी, क्या जो हमारे पास ऊपर इलेक्ट्रिकल वायर हैं रूट्स के लिए कितनी स्पेस चाहिए, पानी रेगुलर उसको कितना मिल सकता है, तो अच्छी हॉर्टिकल्चर वो नहीं है जो प्लांटिंग के दिन अच्छी नजर आए, अच्छी हॉर्टिकल्चर वो होती है जो 10 साल बाद भी सही जगह पर हेल्दी खड़ी हो और हमें वो फायदा दे रहे हो प्लांट्स, मेरा कहने का यही मकसद है।
1: अच्छा, साथ साथ आप हमें ये भी बताइए कि पाकिस्तान में जब हम पौधे का इंतखाब कर रहे हैं लगाने के लिए, तो उसका इंतखाब करते वक्त मकामी आबो हवा, पानी की दस्तियाबी और जगह को कितनी अहमियत देनी चाहिए?
0: बिल्कुल, ये तो सबसे अहम चीज है। अब जाहिर सी बात है, एक पौधा जो है, सादा मिसाल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं अपने लिसनर्स को, कि अगर हम एक सेब का पौधा जो कि पहाड़ी इलाकों में ग्रो होता है, वो मैं अगर मुल्तान या कराची या सिंध के कुछ इलाकों में या बलूचिस्तान में खुश्क एरियाज में लगाऊंगा तो वो नहीं ग्रो करेगा। तो एक प्लांट को सेलेक्ट करते वक्त हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि वो प्लांट हम खूबसूरती के लिए भी चाहिए, शेड के लिए भी चाहिए, या फ्रूट के लिए लगा रहे हैं तो कौन सा उसका इन्वायरमेंट बेटर है ताकि वो हमारे पास सस्टेन कर सके। तो उससे हम जो है सिलेक्शन फिर करते हैं कि वो हमारा शेड का पर्पज़ है, खूबसूरती का पर्पज़ है, और क्या वो हमारा फ्रूटिंग का पर्पज़ है, वो हमारा पर्पज़ क्या है, गली में लगाना है, घर में लगाना है, कहाँ पे लगाना है। तो जैसे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि हमें सॉइल देखनी होती है, टेम्परेचर देखना होता है, फिर ड्रेनेज सिस्टम देखना होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसकी रूट्स जो हैं जड़े वो ज़मीन में जाएंगी तो हमारा ड्रेनेज सिस्टम उसको इफेक्ट ना पड़े उसकी रूट्स की वजह से। तो सारी चीज़ें हम देखते हैं कि वो हमारी हॉर्टिकल्चर में कहते हैं कि वो हार्डी प्लांट है या सॉफ्ट प्लांट है, सकुलेंट है, इससे मुराद ये है कि वो हार्डी प्लांट से मुराद ये है कि वो सख्त इन्वायरमेंट में, जैसे आजकल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत टेम्परेचर भी बढ़ चुका है, फिर फ्लडिंग वगैरह भी बहुत होने लग गई है, अचानक बारिशें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो वो सब देखते हैं कि अगर वो हार्डी प्लांट है वो सस्टेन कर सकता है, और हमने ऐसे पौधों को सिलेक्ट करना है। अगर मैं बिल्कुल एक सकुलर प्लांट सेलेक्ट कर लेता हूँ कि जो कि किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो फिर उसका फ़ायदा भी हमें उल्टा नुकसान है कि हमारे पैसे भी ज़ाया हो रहे हैं और हमारा जो है वक्त भी ज़ाया हो रहा है, रिसोर्सेज ख़राब हो रही है।
1: बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि मेरे एक या दो पौधे लगाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो आप इस सोच को किस तरीके से देखते हैं और छोटी शुरुआत की असल अहमियत क्या है, ये ज़रा हमारे सुनने वालों को बताइएगा।
0: जी, अक्सर लोग ये कहते हैं कि मेरे एक या दो मतलब के प्लांट्स लगाने से कि क्या फ़र्क पड़ सकता है, तो मैं ये कहूँगा कि ये जनरल सवाल है। मैं यहाँ ये नहीं कहूँगा कि दो पौधों से पूरे शहर का टेम्परेचर कम हो जाएगा या उसे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ जाएगा, लेकिन हम जो है हॉर्टिकल्चर में देखते हैं कि लोकेशन हमारे पास बहुत मैटर करती है। अगर वही दो प्लांट्स किसी कमरे के डार्क कॉर्नर में रखें तो इन्वायरमेंट इफेक्ट लिमिटेड होगा, लेकिन अगर वही सूटेबल लार्ज सोलियज यानी बड़े पत्तों वाले पौधे, जैसे हमारे पास रबर प्लांट्स हैं जो डेकोरेशन इनडोर प्लांट्स जिनको हम कहते हैं, वो हम ऐसी जगह पर बैल्कनी में रख लें या विंडो के आसपास रख लें, तो और इसके अलावा जो है बैल्कनी में अगर बड़ा कंटेनर रख के, कोई बड़ा जो है वो प्लास्टिक का कोई ड्रम टाइप चीज़ रख के, आजकल तो बैग भी मिल जाते हैं बहुत अच्छे, उनमें जो है अगर हम एक क्लाइंबर यानी एक बेल लगा लें तो वो ना सिर्फ हमारे जो है घर को खूबसूरत बनाएगी बल्कि वो अंदर के इन्वायरमेंट को, टेम्परेचर को कम बहुत इफेक्ट करती है, बहुत कम करती है। अक्सर आपने पोस्ट भी देखी होगी डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे के लोगों ने शेयर की होती है कि चलते रोड पे या बहुत जहाँ पे खुशहाली है या रोड है या गली है जहाँ पे बिल्कुल कोई दरख्त नहीं है वहाँ का टेम्परेचर हाई होता है, जबकि एक दरख्त के नीचे टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो वही क्लाइंबर जो है वो हमारे रूम का टेम्परेचर बहुत अच्छा बना देती है। इसी तरह जो है और प्लांट है तो ना सिर्फ हमें जो है शेड दे रहे हैं या खूबसूरती दे रहे हैं बल्कि वो हमारे अंदर का जो इंसान है उसको भी खुश रखते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है।
1: ओके जी, अच्छा अगर किसी के पास लॉन ना हो या कोई ऐसी बड़ी जगह ना हो जहाँ पे पौधे लगाए जा सकते हों, तो क्या इंडोर पौधे लगाए जा सकते हैं जैसे बालकनी में लगा लिए, छोटे गमले, छत पर पौधे या दुकान के बाहर, तो इस चीज़ को ज़रा सा बताइएगा कि किस तरीके से हम इंडोर प्लांटिंग कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, लेकिन हर जगह का जैसे आपने मुख्तलिफ जगह का बताया तो हर जगह का पर्पज हमें अलग से समझना होगा। अब इंडोर प्लांट में हम अगर ये बात करें कि कुछ हमारे पास इंडोर प्लांट हैं और हमें जो है इतनी सख्त गर्मी में किसी को अगर एयर कंडीशनर या एयर प्योरीफायर की ज़रूरत है तो ये पौधे तो उनको रिप्लेस नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है वो हमारे छोटे पौधे हैं, बालकनी में है या रूम में है या किसी ऑफिस में है। लेकिन वो जो है इंडोर प्लांट्स हमारे एक विजुअल कंफर्ट और इंसान की नेचर के साथ बहुत कनेक्ट करते हैं और इनको बहुत अच्छा बना देते हैं। फिर जैसे मैंने पहले भी बात की कि माइक्रो क्लाइमेट जो हमारे बैल्कनी का है या कोर्ट यार्ड का है या हमारे पास टेरेस का है, तो ये भी जो है वो इंटरेस्टिंग लोकेशन हमें देता है और इसी पर जो है बहुत खूबसूरत जो है वो प्लांटिंग हो सकती है और इससे जो है बहुत अच्छे पौधे उग सकते हैं। जैसे हमने आजकल महंगाई है और बाकी चीज़ों पे भी हम देखते हैं, तो हम घर की बैल्कनी में या घर का छोटा सा जो कोर्ट यार्ड है या लॉन है उसमें हम अपनी किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। उससे ना सिर्फ हमारा जो है एक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, एक्सरसाइज हो जाएगी, हमें जो है फिर डिफरेंट सब्जियाँ भी मिल सकती हैं, छोटे फ्रूट्स भी मिल सकते हैं, और इससे जो है फिर वही बात आ जाती है कि आपका पर्पज क्या है प्लांट लगाने का, और उससे हमें फिर जो है सिलेक्शन करनी पड़ती है और हर क्लाइमेट के लिए हर इलाके के लिए अलग प्लांट्स जो हैं वो सजेस्ट किए जाते हैं। अगर आपने इंडोर लगाने हैं तो जैसे रबड़ प्लांट है या डिफरेंट टाइप के कैक्टस प्लांट्स हैं, वो बहुत अच्छा एक तो इन्वायरमेंट बना देते हैं, और दूसरा फिर बैल्कनी में अगर आप आए तो हम कोई क्रीपर लगा सकते हैं, कोई बेल लगा सकते हैं, तो ये चीज़ें इन्वायरमेंट को बहुत इफेक्ट करती हैं। और फिर एक दो पौधे से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि अगर मेरा मोहल्लेदार है या कोई शॉप पे आने वाला बंदा है वो देखता है, मेरे ऑफिस में आने वाला बंदा अगर वो देखता है उसको खूबसूरत लगता है, तो उसके अंदर एक सोच डेवलप हो सकती है कि मैं भी लगाऊँ, और इस तरह करते करते वही बात के कतरे कतरे से जो है वो दरिया बनता है, तो लोग इकट्ठे करते जाएंगे तो माइक्रो क्लाइमेट जुड़ते जाएंगे तो एक ओवरऑल क्लाइमेट पे इफेक्ट पड़ता है।
1: बिल्कुल जी। अच्छा, टाइम भी बहुत लिमिटेड है, और लास्ट में हमारे सुनने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस सोच के साथ कि एक पौधा एक सोच और एक बेहतर पाकिस्तान?
0: जी बिल्कुल, मैं एक यही पैगाम देना चाहूँगा कि एक पौधा एक सोच एक बेहतर पाकिस्तान का मतलब मेरे लिए यही है कि हरियाली को सिर्फ डेकोरेशन पे ना देखें, आप अपने लिविंग इंफ्रास्ट्रक्चर में इसको समझना चाहिए कि हमारे लिए
2: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by. अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए, आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: सिंध के माथे का झूमर
2: DFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

लहर जिंदगी की लहर GFF इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक छा अवां अच्छन वारन खां परेशान आयो पेश आहे आर्श क्रीम हेयर कलर पहंजे पसंदीदा रंग सा पहंजो अंदाज बणायो वधिक दिलकश आई वधिक स्टाइलिश पार्टी हुजे ऑफिस हुजे या के खास मौके जी तैयारी हर लम्हे पहंजो बेहतरीन अंदाज जाहिर करियो आर्श क्रीम हेयर कलर सा पहंजी शख्सियत में आणी पहंजी खूबसूरती के जो नओ रंग आर्श क्रीम

back once again. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, मुझे कहते हैं आरजे रुखसार, आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का, और आप सुन रहे हैं एक ब्यूटीफुल सॉन्ग, और सॉन्ग के साथ साथ हम लेंगे आप लोगों की बहुत सारी लाइव कॉल्स और बहुत सारे मैसेजेस जिन लोगों ने कमेंट कर दिए हैं, मैं देख रही हूँ शिकायतों वाले कमेंट्स।

के देख रही हूँ। अच्छा स्मार्ट किशोर कहते हैं कि गुड मॉर्निंग, मैं वहाँ लाइव पे ढूंढ रहा था आपको, यहाँ आप छुप कर शो कर रही हैं। हाँ जी, मैं छुप छुप के शो कर रही हूँ। और कहते हैं कि वो शो खत्म हो गया, वो शो खत्म नहीं हुआ, असल में वेनसडे को उसका ऑफ होता है और वेनसडे को हमारा एज इट इज जैसे जिंदगी गुलजार है प्रोग्राम हुआ करता था वो होता है, ठीक है। तो ये बात

आर्मी मालियाती इदारे आई एफ एम जी नई रिपोर्ट में सरकारी दल इंकशाफ आई एम एफ रिपोर्ट में खिते में जारी तकरार से तेल जो कीमतूं वधियूं आहिनि। महंगाई सबब गुरबत में भी वाधी आहे। खिते में मौजूद गरीबनि मां 48 सैकड़ो पाकिस्तान में आहिनि। अफ़गानिस्तान, शाम ऐं यमन में बि गुरबत वधी आहे।

0: सिंधवाना जे वजीरिस्तान नाहे जो माण्हू FIR दाख़िल कराइण में देरि कंदा। वाना में बि माण्हू केस रिपोर्ट कराइनि था, सिंध में छो नथा अचनि? सुप्रीम कोर्ट जा सिंध में FIR दाख़िल।
1: आप सुन रहे थे
0: देर वारे केस
1: GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream, Munfarid aur Jadeed Formulation ke saath aapko gora banaye. Super White Oil Free Beauty Cream ke natural minerals jo de bina chip chip ke chehre par nikhar sirf chand dino mein. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
3: Finally, ab thoda me time banta hai. Haan to aur kya, sara din function mein busy rahi hain hum. Ab skin ki care kare, kal barat pe bhi jana hai. Tum strawberry wali, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
4: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
5: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
4: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
5: अच्छा, वेरियंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
6: सुपर

आप सुन रहे हैं GFM88 नेटवर्क. हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मठियारी सकरन हिरापुर मातली नूरियाबाद और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी इज इन ब्यूटी शो. बिल्कुल जनाब, प्रोग्राम आप लोगों तक निशर किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों के साथ बातें होती है. क्यों ना हो जनाब, क्योंकि मार्केट में इतने जबरदस्त जब प्रोडक्ट को आप लोगों के परचेज करते रहिए और यहाँ हासिल करते रहिए. क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो या फिर डी स्किन फेस वॉश हो, आपकी खूबसूरती करते चेहरे को कशिश बनाते हैं. ये आप लोगों को इस पाएगा. तो प्रोग्राम में आप हमारे साथ मौजूद हैं. यकीनन आप जानना चाहते हैं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में. और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत सारी वाली बातें हैं कि आप लोगों को बताई जाएंगी. और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में ये तो आप जानते हैं कि डी स्किन को डी स्किन का फेस वॉश मिल रहा है, यानी कि ये दो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है. तो चंद हजरात हैं, खवातीन हैं, आप सारे लोग खूबसूरती का ख्याल रखिए जनाब और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना, ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, यानी कि इसे आप सब लोग ट्राई कर सकते हैं. और ये मेडिकेटेड फार्मूला है. तो इस तरह का अगर कोई भी फार्मूला आप लोगों को बताया जाए, जो कि भाई आप लोग अगर परचेज करने जाते हैं मार्केट में, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स देकर सबसे पहली बात तो ये हो जाती है कि भाई आप कंफ्यूज हो जाते हैं. तो आपकी कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा और आपको डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाएगा. तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत ज्यादा वाली बातें हैं जो कि जानना आप लोगों

लिए जरूरी है, लेकिन कहते ना कितनी जल्दी क्या है, अभी तो हमने स्टार्ट किया है। तो बिल्कुल जनाब, जरा अपना भी तारुफ करवाते हैं सो लिसनर्स फॉर प्रेजेंटिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड योर डीजे सिद्धराव मुस्कान, नाम तो सुना ही होगा। तो बिल्कुल आपके सिद्धराव के साथ मौजूद है जनाब, इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाएंगे। हाँ जी बिल्कुल बनाएंगे आप लोगों को ब्यूटीफुल, वो भी गारंटी के साथ। तो जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है जरा अपने हाल चाल बताते जाइए। सो डियर लिसनर्स, अंत के फहालत उनके से ही आपकी हालत, उम्मीदन शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सुपकुल मोड के साथ सुपकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है, फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मारी ली हैं। आपको पता है ना, जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहेगा पूरे पूरे तीन यानी कि दो घंटे हमारे पास। आप सोच लीजिए कितनी ज्यादा वाली बातें करेंगे, प्रोग्राम का हिस्सा भी बनते जाएंगे, यानी कि आप शामली प्रोग्राम भी हमें करने वाले हैं। और क्या तरीकेकार होने वाले हैं वो बिल्कुल आप लोगों को बताए जाएंगे, और साथ ही साथ डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की क्या क्वालिटीज हैं वो भी आप लोगों को बताएंगे। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर किस तरह से अवेलेबल करा सकते हैं वो भी आप लोगों को बताएंगे। तो अवेलेबल कराना ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जबकि ऐसा वाला सीन होता है कि भाई आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर जाएं और वहां से नाम लेकर तलब करें। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो और डी स्किन का फेस वॉश हो, आपकी खूबसूरती हो और क्या कहने हो। अच्छा, उन्होंने कहा अलावा यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए, यानी कि फ्री होकर हमारा इंतजार कर रहे थे। ऐसे बहुत सारी अंटियां, अमियाएं, खालाएं, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी, यानी कि लंच बनाने के दौरान। सो भी अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे वेरी वाले गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुन लिए हैं तो जनाब आप जबरदस्त से गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपके बोरिंग लाइफ में भरी की चटपटा मसाला बिकॉज आली रे आली सिद्धराव अली बोस आपके होंठों पर 440 उल्के संभालने के लिए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्के स्माइल लाते और यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं। आगे से प्रोग्राम किया जाएगा जनाब एक बहुत ही ब्यूटीफुल से कसीदे के साथ। तो बहुत प्यारा सा कसीदा हम प्रोग्राम के स्टार्टिंग में सुन लेते हैं। उन्हें कहा पोई जी वापस तमाम से मुखातिब त्यू था तो तमाम के बुधाई था प्रोग्राम के अंदर छा थियण मारू है। आई प्रोग्राम में अंदर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो कहती हूँ गाली वाइन जी के तमाम जलाए लाजमी है ना ही जरूरी है। सो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल तमाम कंधा रहो, खूबसूरत थींदा रहो। और जनाब प्रोग्राम है वाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाइए और आप भी खूबसूरत हो जाइए।

0: जी आप सुन रहे हैं वाइटेशन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स है जिनके बारे में आप लोगों को बताया जाता है और क्यों बताया जाता है ये चीज भी बड़ी मायने रख रही होती है। अगर आप अपने खूबसूरती के बारे में जरा थोड़ा सा परेशान बैठे हैं, आप लोगों को समझ नहीं आता कि कौन सा प्रोडक्ट हमें लगाना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट हमारी स्किन के मुताबिक ही है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में मैं बताती हूँ ताकि आप लोगों के चेहरे पर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, गैर जरूरी चीजें जो आपके चेहरे को इरिटेट कर रही होती हैं, आपको जरा परेशान कर देती हैं, तो उन तमाम चीजों से आप लोगों को रिलीफ दिला सके और आप लोगों को बता सके कि भाई यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कितना जबरदस्त रोल होने वाला है जब आप अपनी जिंदगी के अंदर ऐड करेंगे डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन का फेस वॉश मौजूद है। अगर आप भी चाहते हैं इस्तेमाल करना तो जल्दी से जाइए अपने करीबी जनरल स्टोर से मालूमात लीजिए और परचेज करते जाइए। उनके अलावा आज जो प्रोग्राम जो टॉपिक थियण वा हुआ है यानी कि आज के प्रोग्राम का जो सवाल आप लोगों से पूछा जा रहा है वो क्या होने वाला है, तो आज ऐसे ही बैठे बैठे ख्याल आ जाता है ना कभी कभी जैसे बिल्कुल वही वाला ख्याल मुझे आया, मैंने सोचा कि भाई क्यों ना आप लोगों से पूछा जाए कि आप मुझे बताएं आज कि ये जो मैं आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताती हूँ, बहुत ज्यादा वाली बातें रोज रोज बताती हूँ, डेली डेली बताती हूँ, तो आज आप मुझे जरा ये बताइए डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर ना ये जो विटामिन ई बीट्स है और माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन है इसका क्या रोल है। हाँ जी, आप लोगों ने इतना ज्यादा सुन लिया है मुझसे, आज जरा आप लोग मुझे बताएं कि ये जो विटामिन ई बीट्स हैं और माइक्रो बीट्स हैं इनका क्या रोल है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर, ये आप मुझे बताने वाले हो। जिन लोगों ने डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज किया है ना वो तो मुझे इसे फट से बता देंगे कि भाई उनको पता है कि जब आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं तो आपको रिजल्ट्स कैसे शानदार से मिलते हैं। तो आज आप लोगों की बारी है, सारे लोग मुझे बताइए कि विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स जो हैं इनकी क्या क्वालिटीज है और ये डी स्किन ब्यूटी क्रीम क्या रोल प्ले कर रहे होते हैं। इनका अलावा अगर तासने प्रोग्राम चाहिए था शामली प्रोग्राम होना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK, सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर हम मुझे फेसबुक पर सुनने वाले हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाएगा, वहाँ पर आइए आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाती है जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज्यादा किया करें। शेयर करने से ऐसा होता है शेयरिंग इज केयरिंग तो होती ही होती है, लेकिन शेयर करने से हमारी जो पोस्ट है ना वो बहुत सारे लोगों तक पहुँच पाती है और हम बहुत सारे लोगों को बता पाते हैं कि वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज आप सब लोगों के लिए इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स ये मेडिकेटेड फार्मूला है और मेडिकेटेड जो फार्मूला होता है ना उसके अंदर वो तमाम चीजें ऐड की जाती है जो कि आप लोगों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए होती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि भाई हमारी खूबसूरती सिर्फ बढ़नी चाहिए तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर सकते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के फार्मूले की अगर बात करें यहाँ पर तो ये 2-in-1 फार्मूला है, यानी कि अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लोगों को इस तरह के रिजल्ट्स मिल रहे हैं जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया हो। और बिल्कुल आज मैंने आप लोगों से जो सवाल पूछ लिया है वो उसका जवाब आप मुझे बताएंगे कि ये जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर विटामिन ई बीट्स हैं और माइक्रो बीट्स हैं इसका क्या रोल है, इसका क्या काम है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर, आप मुझे बताइए जल्दी जल्दी से। और हमारे प्रोग्राम का ऐसा बनते जाइए, आपके मैसेजेस मुझे मिलते जा रहे हैं तो जल्दी से हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर करना, ये आप लोगों का काम होता है। अच्छा, जीन अली हमें ज्वाइन कर चुके, कहते हैं कि जो हमारे हिस्से का है वो कभी ना कभी हमारे पास खुद ही आ जाएगा। बिल्कुल आपने सही लिखा है। और लिखते हैं कि कोई भी तकलीफ हमेशा नहीं रहती, हम हाँ जी ये अल्लाह का वादा है, तुम बस सब्र रखो और अच्छे वक्त का इंतजार करो। बिल्कुल आपने सही लिखा है जेन। और जेन आप मुझे बताएं आपने डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज कर ली या फिर अभी तक आप सिर्फ खाली प्रोग्राम सुन रहे हैं। भाई आपने डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करनी है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ डी स्किन का फेस वॉश भी आपको मिल रहा है। अच्छा, हमारे साथी नजीर खोसू भाई हमें बलूचिस्तान से सुन रहे हैं, लिखते हैं कि हमेशा जोड़ने की कोशिश कीजिए तोड़ने की नहीं, दुनिया में सुई बनकर रहिए कैंची बनकर नहीं, क्योंकि सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। ओके जी, जबरदस्त हो गया। यासीन खंडा में सुन रहे हैं, कहते हैं हाय कैसी है तबियत आपकी रोजाना की तरह, आज भी आपका शो वेरी वेरी नाइस ब्यूटीफुल है, थैंक यू वेरी मच यासीन खंडा। अहद जरवार में सुन रहे हैं, अहद भाई वालेकुम अस्सलाम के साथ आपको वेलकम कहते हैं। तारिक भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम तारिक भाई। और तारिक भाई लिखते हैं कि अदी हाँ हाँ जी अदी, मैं आज अहमद भाई के साथ हूँ, अहमद ट्रेडर्स तारिक रोड जेकब आबाद में। इनकी शॉप है, हमारे बहुत अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर हैं और आज हम डेरा मुराद जमाली बलूचिस्तान आए हुए हैं, डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल करवाने आए हैं। क्या बात है जी, अब तो बलूचिस्तान के लोग भी रेडी हो जाए क्योंकि आप लोगों के लिए भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अवेलेबल करा दिया जा रहा है। तो जितने भी बलूचिस्तान के लोग हमें सुन रहे हैं वो सारे लोग भी भाई जाइए अपने करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन का फेस वॉश परचेज करते जाइए। और जी अब्दुल जी केसर हमारे साथ है। अब्दुल जी केसर, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक ठाक है। जवार मोहम्मद बचल शंबानी भाई हमारे प्रोग्राम में मौजूद है, वेलकम हो गया। रिजवान अली हमारे प्रोग्राम में मौजूद है, आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है, थैंक यू सो मच। अल्लाह दिना भाई कश्मोर से हमें सुन रहे हैं, वेलकम कहते हैं भाई को। और हमारे साथ है गुड आफ्टरनून, हेलो सिद्रा जी, हाउ आर यू, योर शो इज वेरी नाइस, दिस इज अल्ताफ अली गादी बलोच फ्रॉम कराची। ओके जी, कराची वालों को भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम की सहूलत हमने मयसर कर ली है। अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करना चाहते हैं तो जाइए अपने करीबी जनरल स्टोर से परचेज कीजिए और नाम लेकर तलब कीजिएगा डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपको नाम आना चाहिए, वैसे तो कुछ लोगों को नाम नहीं आता अभी तक, लेकिन आपको यो इतना बताती हूँ ना, तो वो इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोगों को नाम याद हो जाए और आप अगर मार्केट चले जाएं तो आप लोग सही से नाम लेकर सही वाला प्रोडक्ट परचेज कर सके। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश, नाम ही काफी है। अच्छा, रिजवान लिखते हैं, मुझे पसंद है इत्र की खुशबू पर उसकी गली की क्या बात है, है तो सुरूरे कोयल भी अच्छा पर उसकी निदा की क्या बात है, दुनिया में है बहुत समंदर गहरे गहरे पर उनकी आंखों की क्या बात है, है तो चांद भी कितना हसीन पर तेरे हुस्न की क्या बात है, दुनिया में है रेशम कितने नरम नरम पर तेरी कलाई की क्या बात है। क्या बात है जी, क्या बात है। दर्दी दिल हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून, मैं ठीक हूँ, आप बताओ स्वीटी कैसी हो। अबू हनीफ अल बलोची भाई हमें सुन रहे हैं, गुड आफ्टरनून। नजर मोहम्मद भट्टी भाई, हेलो, कहाँ से सुन रहे हैं जी? मटियारी से सुन रहे हैं मुझे लग रहा है। और मास्टर मजरूर का गाना सुनना चाहते, पहले मुझे ये बताएं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करी या नहीं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करो फिर आप लोगों की फरमाइशें लगा दूंगी। और वासे भाई हमें सुन रहे हैं, मुझे प्यारी भेण सलाम, वालेकुम अस्सलाम, ठीक है तामदा की आयो। अली रजा लगारी हमें सुन रहे हैं जी, सॉन्ग जी फरमाइश कया सोने भा, डेडिकेशन तवाजी बने थी। अजहर लगारी, आकिब लगारी, अनवर लगारी, अब्बास लगारी, आरजे गुलाम मुस्तफा टालपुर, इमाम बख्श खोखर, आई अली रजा भाई भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करी रहे हो आए, सो अम्हा भी लगायो जिन जिन अन्या ताई कोन वर्ती आए। यासिन खान कहते कि मैं भी 2 या 3 दिन में छुट्टी पर जाऊंगा अपने शहर लख रोड में, तो आप वहां से डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करेंगे या फिर आप यहां से लेकर जाएंगे। और हमारे साथी जी महर इरफान सियाल साहब कहते हैं, गुड आफ्टरनून मैम, वी आर लिसनिंग योर प्रोग्राम फ्रॉम मुल्तान। क्या बात है सर, वेलकम हो गया। और मुलाजिम भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, वालेकुम अस्सलाम। और दर्दी दिल लिखती हैं कि गम हमेशा के लिए नहीं आते, रात जितनी भी गहरी हो रोशनी अपनी राह ढूंढ ही लेती है, सबर का दामन थामे रखें, अल्लाह बेहतर वक्त पर बेहतरीन से नवाजेगा इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। चाचा खालिद आ चुके हैं, हेलो। और मोहम्मद जमान भाई, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं? ठीक ठाक है। और ऐसे ही आप हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और जरा अपने होने का एहसास दिलाते रहिए। टाइम हुआ है जनाब शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाने का, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते, आपने कहीं नहीं जाना, अपनी जगह से मत हिलिएगा और टॉपिक को फॉलो कीजिए, मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूं। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइटेश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी क्रीम। डी स्किन ब्यूटी क्रीम का ये कमाल है जनाब कि आप लोगों की खूबसूरती जो है ना वो दिन ब दिन बढ़ती जाती है और आप हसीन जवान और खूबसूरत होते जाते हैं, तो लगाते रहिए और खूबसूरतियाँ हासिल करते रहिए।
1: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by.
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए, आर्श ब्यूटी क्रीम एलोवेरा।
1: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by.
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए, आर्श ब्यूटी क्रीम एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बना, तो आर्श अपनाए, आर्श ब्यूटी क्रीम एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो आर्श ब्यूटी क्रीम।
3: It's time to commercial break.
4: खुशखबरी खुशखबरी, आपके अपने शहर मीरपुर खास में एक रोजा मुफ्त डेंटल मेडिकल कैंप का तारीख 11 अक्टूबर 2026 बरोज इतवार सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक लगाया जा रहा है, जिसमें डॉक्टर कल्पना कुमारी BDS RDS दांतों और मुंह की बीमारियों की माहिर, दांतों के दर्द, मसूड़ों से खून आना, दांतों की सफाई, दांतों में कीड़ा लगना और मुंह की तमाम बीमारियों का मुफ्त चेकअप करेंगी। एड्रेस अलनूर मेडिकल सेंटर खरी क्वार्टर्स मीरपुर खास। मजीद मालूमात के लिए राबता नंबर 03140221334।

0: अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: खपे सुपर वाइट रॉइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जंहिंमें आहिनि चांवरनि जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द खे रिस्टोर करे हुन जी नमी खे लॉक करे ऐं चांवरनि जूं खूबियूं जिल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे सिर्फ़ टिनि ॾींहनि में जिल्द खे बणाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट उन सां गॾो गॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जंहिंजी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक ख़ूबसूरती हाणे हर ॾींहुं रहो ब्यूटिफुल सुपर वाइट रॉइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
2: सिंध के माथे का झूमर
3: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज़।

0: நாள் ரணச தட்டோப்புத்து
1: हर पहर जिंदगी की लहर जीएफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
0: सिंध के दिल से निकली आवाज।
2: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 7:30 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
5: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज। GFM 88 की आवाज।
6: ओके जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर माधिली नूरियाबाद और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों को बताया जाता है, डी स्किन फेस वॉश के बारे में आप लोगों को बताया जाता है, ताकि आप लोगों को भी तो पता चले कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो या फिर डी स्किन फेस वॉश हो, आप लोगों के चेहरे के लिए क्यों और कैसे जरूरी है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में अगर आप लोग जानते हैं तो मुझे जरूर बताया करें कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज जो है ना आप लोगों के चेहरे के लिए कितने ज्यादा फायदेमंद साबित हो चुका है। अगर आप मर्द हजरात हैं, खवातीन सब कोई इस्तेमाल कर सकता है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम की जब बात आती है तो जनाब ऐसा तो आप लोग सोच ही रहे होंगे कि भाई खूबसूरती की बात हो और स्किन केयर को नजरअंदाज कर दिया जाए, ये तो हो ही नहीं सकता ना। आजकल के दौर में देखा जाए तो हर कोई जो है वो खूबसूरती के चक्करों में पड़ा हुआ है और उनको चाहिए होता है कि भाई बहुत सारे इस तरह के प्रोडक्ट्स हमें बताए जाए जो हम लगाएं, बस हम ऐसे जादू की छड़ी फिर जाए और हम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाए। और जब आप बहुत सारे केमिकल से भरे हुए प्रोडक्ट्स का इंतखाब कर लेती है अपनी स्किन के ऊपर और जब लगाने के बाद आपके चेहरे पर निखार तो नहीं आता लेकिन आपके चेहरे की स्किन जो ना वो बिखर जरूर जाती है, आपके चेहरे पर बहुत सारे इस तरह की चीजें आ जाती हैं जो कि भाई देखी नहीं जाती। अगर आप भी इन तमाम चीजों से तंग आ चुके हैं, बेजार हो चुके हैं, आपका यही एक कहना है कि भाई सारे प्रोडक्ट्स तो ऐसे ही होते हैं, तो मेरी जान ऐसा कोई सी नहीं है। जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का जो यूज है ना आप लोगों की खूबसूरती के लिए इस तरह से भी जरूरी है, इस तरह से भी काम करता है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है, यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम को उन तमाम स्किन से रिलेटेड डॉक्टर्स ने मिलकर तैयार किया है जो कि आप लोगों की स्किन के लिए फार्मूले ईजाद करते हैं, फार्मूले बनाते हैं। तो आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर सकते हो, ये मेडिकेटेड फार्मूला है तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप सब लोग तसल्ली से और आराम से लगाइए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों को मैं बहुत सारी बातें बताऊंगी, जैसे कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है मेडिकेटेड फार्मूला तो है ये आप जानते हैं, लेकिन डी स्किन ब्यूटी क्रीम 2-in-1 फार्मूला है क्या ये बात आप जानते हैं? बिल्कुल, जो लोग रेगुलर मुझे सुनते हैं वो लाजमी जानते होंगे, बाकी जो लोग मुझे पहली मरतबा सुन रहे होंगे उनके लिए नई बात होगी। तो आप जो लोग मुझे पहली मरतबा सुन रहे हैं आप जरा सुकून से सुनिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये एक मेडिकेटेड फार्मूला होने के साथ साथ ये एक 2-in-1 फार्मूला भी है। और 2-in-1 फार्मूले का क्या काम होता है भाई? तो 2-in-1 जो फार्मूला होता है ना वो आप लोगों की स्किन के लिए यानी कि ऐसा होता है कि आपकी जिंदगी को आसान बना देता है। वो कैसे? जब आप मार्केट जाते हैं या फिर सैलून वगैरह जाते हैं, बहुत महंगे महंगे फेशियल्स कराते हैं, तो आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि नाइट क्रीम की तरह मिल रही है, ये एक नाइट क्रीम है, आप लोगों का टाइम बच जाता है, बस आप नाइट क्रीम जो है अपने चेहरे पर अप्लाई करते हैं, आप लोगों को जो रिजल्ट्स मिलते हैं मेन पॉइंट जो है शो स्टॉपर अगर उसकी बात करें तो वो भाई आप लोगों को रिजल्ट्स मिलने वाले हैं फेशियल वाले। तो अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करने वाले हैं तो ये बात आप याद रखिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल के फौरन बाद आपको जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो फेशियल वाले रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ऐसा लगेगा, ऐसा महसूस होगा कि आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया हो, क्या बात है भाई साहब। तो ये जो आप घंटों घंटों बैठकर अपने लिए सैलून्स में टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, पैसे भी बहुत ज्यादा लग जाते हैं आप लोगों के, आप ऐसा काम कीजिए मुनासिब सी कीमतों के अंदर आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम को परचेज कर आइए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये भी बात है कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना ये ऑल स्किन के लिए है, यानी कि अगर आपकी स्किन ऑयली हो, सेंसिटिव हो, डार्क, फिर ज्यादा कॉम्बिनेशन टाइप स्किन हो जाती है आपकी, सर्दी गर्मियों में अलग हो जाती है, तो हर स्किन की बिल्कुल सूटेबल है। और साथ साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप गर्मियों में भी स्किन भी करेगी और आप लोगों के चेहरे भी लाएगी, तो साथ साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम को लगाने की ये भी प्लस पॉइंट है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से बड़े परफेक्ट से रिजल्ट मिल जाते हैं। तो सिर्फ 2 रातों में अगर आप खूबसूरत बनना चाहते हैं बिना किसी केमिकल को लगाए तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर सकते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का जो यूज होगा ना आप सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। اور آپ استعمال کر رہے ہیں نہیں مجھے کریں کیونکہ خوبصورتی کو مزید نکھانے کے لیے اپنی روز مرہ ڈی اسکن بیوٹی کریم کو کیونکہ ڈی اسکن خوبصورتی کو نرم اور ملائم خوبصورت سا احساس آپ کی اسکن کے اندر آ جاتا ہے اور آپ اب تو زندگی پر اگر آپ کی ہے تب تو بھائی اس طرح گریز کیجیے اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کیجیے کیونکہ دو راتوں کے استعمال کے فوراً بعد آپ کو مل جائے گا پرفیکٹ والا حسن پرفیکٹ والی خوبصورتی اور آپ

अवेलेबल करा सकते हैं, क्योंकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स के अंदर भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम को मिलना चाहिए। उसके लिए आपको नंबर बताऊंगी, उस नंबर के ऊपर राता कीजिएगा। और नंबर क्या होने वाला है नोट कीजिए, 03-12-50-25-907 बुड़ी 312 पंजाह 970 एंड बियो नंबर आहे 03-27-38-43-09 बुड़ी 332 73-84-309 ही नंबर साइन जी की तुम डायल करी पांच करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन जो फेस वॉश अवेलेबल कराए सको था। सो बाबा देर साजी हानी तुम नंबर से रातों कयो कॉल कयो या वरी मैसेज कयो। तारिक भाई वेठो आए तुम के रिस्पांस दिंदो, तारिक भाई के बुधायो हाल अहवाल दियो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम तुम परचेज करण चाहियो था पर तुम एरिया में कौन मिली रही आए, तो अवेलेबल कराईंदा रहो ए खूबसूरत थींदा रहो। मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछना है कि भाई सारी सारी आप मुझे लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि भाई व्हाइट माइक्रो बीट्स ऐड किए गए हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम की। मुझे बता बीट्स का क्या कि इसके तो मिलते हैं ब्यूटी क्रीम का बीट्स और माइक्रो बीट्स की एडिशन है, तो ये आज आप मुझे बताइए 8881 और फेसबुक पर आप मुझे ज्वाइन करते जाइए। आपके मैसेजेस बिल्कुल मुझे मैसेजेस की जान जाए। हाँ आप पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए, पोस्ट को करेंगे तो वो बहुत ही अच्छे और खूबसूरत हो जाएंगे। हाँ जी जल्दी जल्दी से पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए, बहुत सारे लोगों को बताना है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम को लगाना। तीन खंड भाई वाले को मसलाम कहते हैं और ऐसे नारवाणी आ चुके हैं वाले मदद कहते हैं ओ माय फेवरेट आरसी मैडम वेलकम कहते हैं।

हमारा शो सुन रहे हैं, कहते तमाम बेहतरीन शो है, जबरदस्त अब्दुल रऊफ मक्सी का गाना लगाइएगा। जी जी बिल्कुल, अब्दुल रऊफ मक्सी का गाना आपको लास्ट में सुनाएंगे। वहीं भाई आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम अदर अदी, ठीक है तमाम बुधा की आए हो, मजे में आए हो। ऐसा कहते हैं टाइम का तो पता ही नहीं चला एक। हाँ भाई, क्या मतलब आपके यहाँ अभी सूरज निकला है? हमारे यहाँ तो दोपहर हो चुकी है। उन्हें कहा अलावा फहीम भाई तमाम लिंक शेयर किया, ओके तमाम जो गानों अलाइदा सी। और अलीशा हमारे साथ हैं, प्यारी अलीशा क्या कहती हैं, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा, क्या बात है जी। और मुझे बताएं अलीशा, आप जी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर चुकी हैं, आपको कैसा रिजल्ट मिला है? और लिखती हैं कि आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, और आपने नूर अच्छा ये शायरी लिखी है। मैं कहा नूर जहाँ का गाना सुनना चाहती हैं आपको, शायरियाँ बिल रखेंगे लेकिन मेरी पानी भी इंजॉय करते रहिए। इतनी कंजूसियाँ किस बात की, इतना पैसा बचाए छा तो वहाँ बगला ठहरेंगा। न बाबा, जी स्किन ब्यूटी क्रीम वटी जो खूबसूरत रहो आई खुश।

आप लोगों से पूछ लिया है कि मुझे बताएं ये जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर विटामिन ई बीट्स हैं और माइक्रो बीट्स हैं, तो इसका क्या कमाल है जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर? आपको कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करेंगे, क्योंकि इसके अंदर तो विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स की भी एडिशन रखी गई है ना, तो इसका क्या रोल होने वाला है ये आप मुझे बताएं, क्योंकि मैं तो डेली आप लोगों को बताती हूँ, आज आपकी बारी है कि आप भी मुझे बताइए। मुझे पता चले कि मेरे जो लिसनर्स हैं वो कितना गौर से मेरा प्रोग्राम सुनते हैं, या फिर ऐसा वाला सीन है कि एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते अच्छा यहाँ पर नजर मोहम्मद भट्टी भाई कहते हैं कि जी अदी लगायू था डी स्किन ब्यूटी क्रीम छोते मात चवान थो जेके भी बुधंदर आयन उहे भी इस्तेमाल कर पप्पू थी वेंदा अल्लाह वाजी गाल कई अथव बुधो था ना तां सब लगाए बाबा नजर मोहम्मद भट्टी जिया तां भी पप्पू थी वेंदा। और अलीशा कहती है कि नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुसे पिया पागल या जोगी मुझको कहो तुम हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा आपने तो गाने लिख दिए जी हमारी पोस्ट पर कहती मेरे लिए हर खुशी का मतलब आपका साथ होना है। बहुत शुक्रिया अलीशा प्यारी स्वीटी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा रही है नहीं ये भी साथ साथ बताते रहिए। और वासु भाई लिखते हैं कि तेरी सादगी तेरी आजजी तेरी हर एक अदा कमाल है मुझे फख्र है मुझे नाज है बस मेरा यार बेमिसाल है। क्या बात है जी क्या बात है। इकबाल भाइयों में सुन रहे हैं सोनो खान लाशारी मेरे खास आजी सिद्रा नाइस योर शो थैंक यू अच्छा हसनैन रजा हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम हसनैन रजा क्या कहते हैं क्या अस्सलाम वालेकुम आपका प्रोग्राम थारो शाह से सुन रहे हैं। ओके जी थारो शाह में आपको पता है ना कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है क्योंकि हमने ऑलरेडी थारो शाह में अवेलेबल करा रखी है भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम। तो जितने भी थारो शाह के लिसनर्स हैं वो जाइए अपने करीबी जनरल स्टोर से परचेज कीजिए क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी ना सिर्फ आप खूबसूरत हो जाते हैं बल्कि आपकी खूबसूरती की हिफाजत भी होती रहती है वो ऐसे क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है तो कोई टेंशन नहीं कोई आपके चेहरे पर चिकचिक नहीं होगी ऐसा जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट लगाते हैं ना तो आपको ऐसे महसूस होता है कि भाई इसको बस हटा देना चाहिए चेहरे से तो ऐसा कोई सी नहीं होगा। डी स्किन ब्यूटी क्रीम बहुत एक क्रीमी सा फार्मूला है और बहुत एक अच्छा सा फार्मूला है और ये 2-in-1 फार्मूला है तो ट्राई करके देखिए यकीनन आपको भी मजे आ जाएंगे। अच्छा ये हमारे साथ है हेलो विद आरजे सिद्रा मुस्कान जी आप मुझे मेरी फरमाइश का गाना नहीं सुनाती हो क्यों?

शरीफ लिखते हैं कि क्या पता जन्नत में यहाँ आजाद का अलग कहते हैं कि बार बार बदेश की लिस्टी में तो आप बताए ना कि असल पॉइंट क्या है मैं आप समझ जाइए तेरे लिए इशारा काफी होता है क्या मतलब आपको वो इशारा अभी तक नहीं मिला अरे भाई इसका क्या काम है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर क्या रोल प्ले कर रहे हैं विटामिन ए बीट्स और माइक्रो बीट्स मैं जानना चाहती हूँ आप लोगों से कि आपने जो इतने दिनों से मेरा प्रोग्राम सुना है तो कुछ सुना भी है कुछ पल्ले भी पड़ा या एम सिर्फ गाना लगा दो वाला सीन है

0: प्यार को शेयर करते रहिए और वहीं भाई कहते हैं कि आंखें खराब हो गई बच्चों को पाल कर, अब बच्चे बात करें जीते जी अपने बाप को ऐनक नहीं देते खरीद कर, मरने के बाद रखते हैं चश्मा संभाल कर। ओके वफा मुमताज अली खोसो भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी वेलकम एंड खुश आमदीद। वफा मुमताज अली खोसो, कलंदर बख्श खोसो, वालेकुम अस्सलाम, शो तमाम लाजवाब आए, थैंक यू प्यारा भाई, पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए। और यहाँ पर टाइम हुआ है जी, लेते हैं न्यूज ब्रेक, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होंगे, वापसी जल्दी आप लोगों के पास, सुनते रहिए और साथ दीजिए। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड टी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय।
1: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Niha Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अब आप सुनेंगे GA पर KTN
4: Vice Collagen Beauty Cream A project by
5: पाराणा सनाउला जो है ते पीटीआई इस्लामाबाद ते चढ़ाई जी कोशिश कर रही है लॉन्ग मार्च लाए के भी केपी के जा सब वसीला इस्तेमाल कया पे आवाजन अफगानिस्तान मा दहशतगर्दी थी आए अफगान पॉलिसी थे पीटीआई खान सिवाय समूल को मुतफिक है पख्तूनख्वा में वधंदड़ दहशतगर्दीअ खे हर क़ीमत ते रोकणो पवंदो के पी के जे अवाम जूं दहशतगर्दीअ ख़िलाफ़ क़ुर्बानियूं सारा जोगियूं आहिनि ख़्वाहिश आहे त के पी के बी मुल्क जे ॿियनि सूबनि जीअं तरक़ी करे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जूं वफ़ाक़ी वज़ीर अमीर मक़ाम सां मुलाक़ात दौरान ॻाल्हियूं वफ़ाक़ी वज़ीर अमीर मक़ाम कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान ऐं ख़ैबर पख्तूनख्वा जी सूरतहाल ते वज़ीर आज़म खे ब्रीफिंग ॾिनी वज़ीर आज़म जी कश्मीर ऐं गिलगित बल्तिस्तान में अवामी भलाई वारा क़दम जारी रखण जी हिदायत हिन वक़्तु ख़बर नाहे ईरानी हुकूमत ऐं मुल्क जो इंतिज़ाम केरु हलाए रखियो ॿियो नंबर क़यादत ॾे ख़तम थी चुको आहे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जी नाहे ख़बर नाहे त ईरान जे नायब सदर जे डी विन चयो आहे त वाशिंगटन ईरानी सदर ऐं परॾेही वज़ीर सां जंग जे ख़ाफ़ी ईरान खे में वाज़े घटाई करणी पवंदी قطر کے سالسے میں امریکہ ایران جو گالیوں جاری ہیں گالن کے نتیجن تائیں پہنچان والے کوششن کے بھی جاری رکھے ہوئے ہے قطری پرڈی وزارت کے ڈائریکٹر ابراہیم بن سلطان ہاشمی چیو ہے تو مکہ اتحادی خطے کے ملکن کے وسیلن کے طرف سرکار کے بدی کا مضبوط کندو अमेरिका ईरान जंग पाकिस्तान अफगानिस्तान उत्तर अफ्रीका ऐं विच ओभर जे मुल्कनि जी आबादीअ खे वधीक मुतासिर कयो आहे खिते में मौजूद इंताही ग़रीबनि मां अधु ग़रीब पाकिस्तान में रहनि था आलमी मालियाती इदारे IMF जी नई रिपोर्ट में छिरकाईंदड़ इंकशाफ़ IMF रिपोर्ट में चयो वियो आहे त खिते में जारी तकरार सां तेल जूं क़ीमतूं वधियूं आहिनि महांगाई सबबि गुरबत में बि वाधि थी आहे खिते में मौजूद ग़रीबनि मां 48% पाकिस्तान में आहिनि अफ़गानिस्तान शाम ऐं यमन में बि जमनी हुसैन पारां रियाज़ जे के ख़ारिज इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऐं अबा जे एयरपोर्ट खे मिसाइल ज़रिए निशानो बणाइण जी दावा हुसी विड़ाकनि मौजूदु सऊदी जे मुस्तक में एयरबेस ते सऊदी अरब हुसैन जे हमले जी तस्दीक में ॾखण में मिसाइल खे नाकारा बणाइण जी दावा وزیر اعظم کی صدارت ہیٹ ریلویز میں سدھارن بابت اجلاس شہباز شریف جی ایم ایل ون تے کم تیز کرن اے ریلویز میں کارپوریٹ طور طرز جا سدھارا آڑن کی ہدایت ایم ایل ون جی تعمیر لائے کمرشل منصوبن ذریعے بینکس کا فنڈنگ وٹھن جی منظوری ڈنی وئی شہباز شریف چو ہے تو ریلویز کے کمرشل زمین کے استعمال کرے ریلوے کے بہتر بنائے سکے تو اجلاس کے بریفنگ میں

गयो त MLF 1 के चार हिसन में विरायो वियो आहे। आर्मी फंडिंग सां गॾु मकामी फंडिंग ते बि कम जारी आहे। सिक्योरिटी फोर्सेज जूं ख़बर वक़्तनि खां आहे बलोचिस्तान में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कार्रवाइयूं जारी आहिनि। अरिड़हं दहशतगर्द मारिजी विया आहिनि। सिक्योरिटी ज़रियुनि मौजूद KPK जे इलाइक़े उत्तर वज़ीरिस्तान में ख़ारजी दहशतगर्दनि जे थाकनि खे निशानो बणायो वियो। 13 दहशतगर्द जनम बेड़ा कया विया। बलोचिस्तान जे इलाइक़े मस्तों में कार्रवाई दौरान 5 दहशतगर्द मारिजी विया। बारूदी मवाद ऐं हथियार कया विया। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी पारां कामयाब ऑपरेशन ते सिक्योरिटी फोर्सेज खे भेटा पेश कई वई। सिंध वाना या वज़ीरिस्तान नाहे जो माण्हू FIR दाख़िल कराइण में देरि कंदा। वाना बे माण्हू केस रिपोर्ट कराइनि था, सिंध में छो नथा अचनि? सुप्रीम कोर्ट जा सिंध में FIR दाख़िल करण में देरि वारे केस ते सख़्त रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट पारां FIR में शिकायत कंदड़ बदिरां दरख़्वास्त ॾींदड़ जो लफ़्ज़ इस्तेमालु करण जी हिदायत। गुज़री दौरान DIG सकर नासिर आफ़्ताब ऐं SSP खैपुर अमीर मक़सूद सुप्रीम कोर्ट में पेश थिया। पुलिस इख़्तियारनि IG सिंध जी हिदायत ते FIR देर बाबति रिपोर्ट बि सुप्रीम कोर्ट में पेश कई। सिंध में FIR दाख़िल थियण में देर ते सुप्रीम कोर्ट पारां सिंध पुलिस ते सख़्त कावड़ जो इज़हार कयो।

0: सुन रहे थे GAFM नेटवर्क, आप सुन रहे थे
1: GAFM नेटवर्क
0: पर KTN
1: आसान

0: कपड़ शहर जिला खैरपुर मीरस वारा करण फरमाईंदा
1: अजरक के रंगों से रंगी
0: खास एहतमाम है सभी मुसलमानन के हैं
1: जिन के दिल से निकली आवाज
0: हाजी मोहम्मद रही रहो
2: एफएम 88.9
0: रहो
2: सिंध की आवाज।

0: क्या सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम, अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
1: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की,
0: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
2: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
3: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल।
2: मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी, एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
3: अच्छा, वेरियंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
4: पंजे शहर मीरपुर खास में डॉक्टर मुसर्रत अब्बासी MBBS FCPS मैदे अई जिगर जी बीमारियन जी माहिर, मैदे जी जलन तेजाबियत या अल्सर, गले में मानी जी रुकावट, जिगर जी चर्बी कारी अई फिकी साई, वात अई पेट मां रत जो अचन, कब्ज बवासीर वजन जो वधी वणन, अहड़न तमाम बीमारियन वारे मरीजन जो टूमर अई खमीस सुबह जो 10 वगे खां मंझंद 2 वगे ताई अई अरबा मंझंद 6 वगे ताई। एड्रेस रहमत मैदा वो जिगर केयर वेझो आगा खान लेबोरेटरी अली मेडिकेयर सेंटर PM कॉलोनी मीरपुर खास। वधिक मालूमात लाए एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद इरफान अब्बासी 03103844883।
5: अखियन के सब का वे इदारे जा मशहूर ए तजुर्बेकार सीनियर फेको सर्जन डॉक्टर अब्दुल अजीज कुरेशी ए सर्जन डॉक्टर इसरार मोहम्मद हयात खान सफेद मोती जो ऑपरेशन बजरिया लेजर फेको कारे पानी जो इलाज ए ऑपरेशन पर्दन की बीमारियों जो इलाज ए अखियन की बिन बीमारियों जो इलाज कंदा हैं। टाइम रोजाना सुबह 10 वगे का 1 वगे ताई शाम 6 वगे का रात 8 वगे ताई आचर मोकल है जुमे के ढी ऑपरेशन कया वा। एड्रेस सर सैयद रोड गरीबाबाद मीरपुर खास। मोबाइल नंबर 07
6: आयो या बीमारी पुरानी थी वही आहे तो उन बीमारी जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन लेक्चरर नवाब मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल मरीजन जो चेक होम्योप कंदा आहेन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहेन। आवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद है। क्लिनिक जो टाइम आई डी है हर छंछर का खमीस ताई सुबह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकल है। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक बदीन स्टॉप रानी सब्जी मंडी MCB बैंक के सामू।
7: सो बिल्कुल जी, यहाँ पे आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाता है। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है और डी स्किन फेस वॉश मिल रहा है। ये दोनों प्रोडक्ट्स आप इजीली कहीं से भी जाकर परचेज कर सकते हैं। और मेन बात यह है कि भाई अगर आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल अभी तक नहीं हुए हैं तो उसका हल भी आप लोगों को बताया जा रहा है कि आप नंबर के ऊपर रابطہ करेंगे और رابطہ करने के फौरन बाद ही आपके करीबी जनरल स्टोर्स के ऊपर डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन का फेस वॉश अवेलेबल करा दिया जाएगा। सो इस्तेमाल करते रहे और खूबसूरती को जरा पहचानिए और साथ ही साथ अगर आप ना ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुझे जरूर बताएं कि आपको फीडबैक कैसे मिलते जा रहे हैं। और इन के अलावा जिन जिन मानों ने इस्तेमाल किया बागपा जी असान जे आसपास साहिन जिनकी ऐसा सुनानू था तो उन मानों जो डाडो सठो असान के रिस्पांस मिली रहा था डी स्किन ब्यूटी क्रीम हणे का पोए जे का ग्लो करण इस तरह दूर थी वया है और खास के जे को निखार है ना वो अच्छी वयो है और तमा के जे रिजल्ट्स मिले नु एड़ा मिले जे तमा कोई महंगो फेशियल करायो है। अगर आप भी अपने पैसों को बचाना चाहते हैं या फिर अपने टाइम को बचाना चाहते हैं तो आपको चाहिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज आप करके देखिए। मैं इतनी जब ये बातें बताती हूँ ना डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में ये तमाम

आते हैं सच्चे जनाब, आप ट्राई करके देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर जो है ना तमाम दर चीजें ऐड की गई है, जैसे कि इसके अंदर वाइटिन है, गोजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें मिलकर डी स्किन ब्यूटी क्रीम को बिल्कुल जी प्रीमियम फार्मा। अगर आप भी कोई प्रोडक्ट लगाना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों के लिए हाजिर है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को आप मर्द हजरात भी लगा सकते हैं, आप खवातीन भी लगा सकते हैं, ये बिल्कुल मजेदार बात है कि आप सब लोगों के लिए है। और जी ये बात आप जानते हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम को वो जो स्किन से रिलेटेड डॉक्टर्स होते हैं ना, उन्होंने मिलकर ही तैयार किया है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ दो रातों के इस्तेमाल से बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। तो दो रातें लगाएं और अच्छा सा रिजल्ट हासिल कीजिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना ये आपको मुनासिब सी कीमतों में मिल रही है, तो आज ही अपने करीबी जनरल स्टोर पर चले जाइए और वहां से नाम लेकर तलब कीजिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये खास निशानी आप लोगों के साथ शेयर करती चलूं, क्योंकि जो लोग बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते ना, उनको नहीं होता पता कि भाई अगर आप परचेज करने जा रहे हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम, तो आप लोगों को दुकानदार कोई और प्रोडक्ट थमा देता है, कहता है कि भाई ही वठी वनो ही तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम, उन्होंने

ब्यूटी क्रीम आहे अने जो जेको कलर आयो व्हाइट ऐं थोरो थोरो हल्को हल्को ब्लू कलर आहे सो इहो जॾहिं तव्हां कॉम्बिनेशन ॾिसी वञो त पोइ तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी त बाबा तव्हां सही प्रोडक्ट वठो पिया बाक़ी जेके पढ़ियल आहिनि उन्हनि खे त ख़बर आहे वॾनि वॾनि अखरनि सां डी स्किन ब्यूटी क्रीम लिखियल आहे जेको तव्हां नालो ॾिसी करे परचेज करे सघो था ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां गॾु तव्हांखे डी स्किन जो फेस वॉश मिली रहियो आहे वो भी बैठे न विसारींदा तव्हां लाज़मी ट्राई करियो जनाब खूबसूरती हर किसी की ख्वाहिश होती है मैं चाहती हूँ कि अगर आप भी अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहें तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से ही आप अपनी ख्वाहिश को पूरा कीजिए क्योंकि जब आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगाते हैं महंगे या फिर वो ऐसा दावा करता हो कि भाई आपके चेहरे को अच्छा बना देंगे गोरा बना देंगे लेकिन जब आप उस प्रोडक्ट का करते हैं तो आप लोग आप वाकई इस ट्रैप में फंस चुके हैं एक मरतबा कोई केमिकल वाला प्रोडक्ट अपने चेहरे पर लगा ले उसे जान छुड़ाना ठीक करना बहुत है इन तमाम चीजों से बचिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए डी स्किन का फार्मूला बहुत सेफ है आप सब लोगों के लिए नॉर्मली आप हर स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं अब तो खैर से सर्दियां भी आ रही हैं तो सर्दियों में तो वैसे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा प्रोडक्ट का यूज करते हैं स्किन ब्यूटी क्रीम को हमेशा याद रखिएगा ब्यूटी क्रीम का यूज आपकी खूबसूरती में चार चांद ला देगा और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर तमाम भी पांच करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराना चाहो 0338-273-74-89 ऐं ॿियो नंबर आहे 03-12-50-25-907 0312-50-25-907 ही ॿई नंबर आहिनि जेके तव्हां डायल करे पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे ऐं डी स्किन फेस वॉश खे अवेलेबल कराईंदा हलो बाबा सोणा सोणा थींदा हलो प्यारा प्यारा थींदा हलो ऐं पंहिंजी ख़ूबसूरती हाणे तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाइण शुरू कई आहे ऐं डी स्किन अॼु जेको आहे न मामा खां सवाल पुछियो आहे बारे में ॾिसो मां तव्हांखे ॾींदी आहियां पर जॾहिं क़िस्मत सां मां तव्हांखां हिकिड़ो सवाल पुछंदी आहियां त तव्हांजी बत्ती गुल थी वई ॿुधायो वाइटमिन ई बीट्स आहे ऐं माइक्रो बीट्स आहे इन्हनि जो छा कमु आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे अंदरि यानी कि इन्हनि ॿिनि सीज़न जे हुजण सां डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे कहिड़ो फ़ाइदो मिले थो ऐं तव्हांखे कहिड़ो फ़ाइदो मिलंदो इहो तव्हां मूंखे ॿुधायो ऐं 888 ते ऐं फेसबुक ते तव्हां मूंखे जॉइन कंदा हलो था ऐं जिन खे नाहे तरीक़ेकार ख़बर त मैसेज कीअं कंदा असांखे त तव्हां पंहिंजो मोबाइल खणो मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वञो टाइप कयो एल आर के सिंगल स्पैश जो पंहिंजो पूरो नालो लिखो ऐं मैसेज लिखो उनखे शेयर करे छॾियो 888 ते ऐं अगरि तव्हां मूंखे फेसबुक ते ॿुधण चाहियो था फेसबुक ते जॉइन करण चाहियो था त जीए लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है वहां पर आइए आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिलती है उसे आप लाइक करेंगे कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे तो जिन लोगों ने पोस्ट को लाइक और शेयर नहीं किया जल्दी से कीजिए जनाब कैसी कंजूसियां ये तरीके कार फॉलो करके आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएंगे और मुझे बताइए डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप लोगों ने किया या फिर अभी तक रहता है और रहता है तो क्यों रहता है क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का ऐसा प्रोडक्ट लगाएं जो आपके चेहरे पर खूबसूरत भी हो इहा ॻाल्हि बि तव्हां सां शेयर कंदी हलां कुझु माण्हुनि खे ईअं लॻंदो आहे त बाबा असां प्रोडक्ट लॻायूं था ऐं प्रोडक्ट लॻाइण असां अगरि छॾे ॾींदासीं त असांखे जेको रिज़ल्ट मिलियो आहे उहो ख़तम थी वेंदो अगरि तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज़ कयो था त जेको रिज़ल्ट तव्हांखे मिलियो हूंदो उहो तव्हांजो आहे बाबा तव्हांखां केर बि कोन खसींदो चाहे तव्हां प्रोडक्ट यूज़ कयो था या नथा कयो समझी विया जेके तव्हांखे ख़ूबसूरती मिली आहे उहा हमेशा तव्हांजी ख़ूबसूरती आहे ऐं तव्हां हमेशा जे लाइ ख़ूबसूरत थी वेंदा सो अगरि तव्हांजे घर में शादियूं थियण वारियूं आहिनि शादी थियण वारी आहे त बाबा छॾियो सभिनी ॻाल्हियुनि खे दुनियादारी खे हर चीज़ खे डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी अचो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो ये तो बातें थी डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में फिलहाल आप लोगों के साथ जो बातें होंगी वो आप लोगों के फीडबैक से रिलेटेड होने वाली क्योंकि आप लोगों के मैसेजेस मुझे मिलते जा रहे हैं तो उनकी जाने भी आती है और यहाँ पर हमारे साथ फहीम भाई कहते हैं कि टॉपिक बताओ मैं अभी आया हूँ अभी मुझे लग रहा है कि आपने सवाल सुन लिया होगा और ये हमारे साथी हसनीन रजा कहते हैं अस्सलाम वालेकुम थारो शाह में डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल आहे बिल्कुल जी थारो शाह में डी स्किन ब्यूटी क्रीम असां ऑलरेडी अवेलेबल कराए छॾी आहे सो तमा हसनीन वरती आहे या कोन वरती आहे उनखां अलावा एसन कहते हैं टॉपिक का जवाब अभी तक किसी ने नहीं दिया काॾे विया जेके चवंदा आहिनि पहिरियों जवाब मां ॾींदो आहियां ख़बर पएव बिल्कुल इहा ॻाल्हि माना त इहो जवाब मूंखे छो न मिलियो आहे ॾिठो वञे त एसन तव्हां बि जवाब न ॾिनो आहे तव्हां बि ॾियो ख़बर पवे ठीकु आहे और हमारे साथ हैं जी एक मिनट जेन कहते हैं कि हां जी हम भी लगाते हैं डी स्किन और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है सिडो क्या बात है ऐसे ही लगाते रहिए दर्दे दिल कहती हैं कि टॉपिक चंदा फेशियल वाला निखार देते हैं ओके

अली रजा लगारी भाई कहते सिस्टर नदीम मीरानी प्ले करें। मां कोशिश कयां थी भाग अगर मुखे मिली हो टाइम बची हो तो तमाम जलाए बिल्कुल नदीम मीरानी हलाए वठंदा सी। निदड़ी हमारे साथ माचो दी कहती हाय हेलो मैं भी आ गई भला बहुत अच्छा किया भला तुमने। अच्छा हसनैन कहते हैं कि आबिद भाई ने अवेलेबल आबिद भाई ने थारो शामे डीज कंप्यूटर क्रीम को अवेलेबल करा दिया है। आबिद भाई बड़ी मेहनत कर रहे हैं इनको अवेलेबल कराने में। बाकी लोग जो हमें सुन रहे हैं वो भी थोड़ी सी मेहनत कीजिए, जाइए और डीज कंप्यूटर क्रीम परचेज कराइए। ठीक है अवेलेबल तो आप लोगों के लिए अब हो चुकी है, अब ये काम बनता है कि आप परचेज कब कर रहे हैं और आप इस्तेमाल कब कर रहे हैं।

अच्छा बिल्कुल भामा कोशिश कयां थी तव्हांजी पसंदि जो गानो हलाए थो पर तव्हां जेको सखर मां वञो था कराची त सखर मां तव्हां जेको आहे न डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करे लाज़मी वञो मतां कराची में मिले न मिले न करे सखर में त मिले थी त तव्हां सखर मां डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करे वञो ठीकु

पता है। ओके जी ओके। और अर्ज मोहम्मद गोला भाई हमें सुन रहे हैं शहर जेगा बाबा से कहते हैं अर्ज मोहम्मद गोला मुजफ्फर अली गोला अजहर अली गोला शो जबरदस्त लाजवाब आवाज आपकी बहुत शुक्रिया प्यारे भाई। मोहम्मद जमान कहते हैं टॉपिक माइक्रोबीट्स और वाइटामिन बीट जो होते हैं ना चेहरे को नरम मुलायम और चमकदार बनाते हैं। वाइटामिन बीट से चेहरे की खुश्की दाग धब्बे खत्म करता है। ऐलान खत्म। ओके लेकिन मुझे लग रहा है कि आपका जवाब थोड़ा सही नहीं है। अच्छा ये हमारे साथ अब्दुल्ला अली गुलाब है। ओके सो अब्दुल्ला अली लिखते हैं कि विटामिन ए बीट्स जो होते हैं ब्यूटी क्रीम में जल्द को नमी फराहम करने और जल्द को नरम रखने में मदद के लिए शामिल किए जाते हैं। माइक्रोबीट से क्रीम को जल्द पर बेहतर तरीके से फैलाने में मदद कर सकते हैं। ताहम उनका असल काम क्रीम के फार्मुलेशन पर मुनसर होता है। इस प्रोडक्ट के दुरुस्त फवायद इसमें शामिल अज्जा और फार्मुलेशन के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकते हैं। ओके अब्दुल्ला आप मुझे बताएं जी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करते हैं? हाँ जी जेको मनी ना था पोने की ये चाहिए सजे बस सही आए को भी थोड़ो मुझे को न दिया लगती थी। तारिक भाई कहते हैं सजाद अली रुस्तमानी मातली से शो सुन रहे। अच्छा सजाद भाई का गाना हमने कल ही लगा लिया था तारिक भाई, यही वाला गाना लगाया था जो सजाद भाई ने फरमाइश करी है। और रशीद खोसो में सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम हैदराबाद से आपने मुझे ज्वाइन किया है बहुत शुक्रिया। डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाया नहीं रशीद भाई बताएं तो हैदराबाद में मिल रहे हैं? वैसे हाँ मिल ही रहे हैं तो आप जाइएगा और परचेज कीजिएगा।

छो सब का पहले तुम खबर तो छापो चंदन के हाल हवाले छो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाई अव कौन लगाई अव क्योंकि जब आप जादू नगरी जाएंगे तो वहाँ पर भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके काम आएगी, तो जाइएगा और डी स्किन ब्यूटी क्रीम साथ ले जाइएगा और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए, आपकी खूबसूरती के लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है।

माल कराए पो जान चढ़ी दी माँ में। चाचा कहते हैं बेटा सिडो सॉन्ग की रुकेस ते चाचा बिल्कुल तां जो गानो हलाइना से पर जेस नहीं तां सवाल जवाब नडी ना तेज ताई कोन हलाइना सी आज मके सवाल जवाब जेको जेको रिंदो मा उन जो गानो हलाइना से आनी तां ते थव त दिसू केर केर गानो बुदी सके तो जी प्रोग्राम में।

0: साथी जी, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई एम योर अदो अदो हैं जी, अनवर अली भाई फ्रॉम भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिएगा। अब्दुल्ला महर कहते हैं मीरपुर खास से, आपको वेलकम। डी स्किन ब्यूटी क्रीम यूज कर रहे हैं फैमिली में, जियो प्रोग्राम, जियो जी, तमाम भी जियो, जेके जेके जी, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर रहे आए तामी लगा ना तामी टोरो सवाल जवाब जो तली कौन जैसे असल तो प्ले करो कंजूसी कर सुनाने में आपकी मर्जी सो नाइस ऑफ यू तमाम भी तो दिसो कड़ी कड़ी कंजूसी करे वट जी मैं तांगा सवाल पूछा था जवाब न था बुधायो तर में मतलब तांजी कंजूसी मुझी कंजूसी बराबर थी वही सफा बराबर पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम के वठण में तां कंजूसी न कजो डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी छो भई हाँ मां सोचा थी तो वाकई रोज रोज मानो जा नेठ मां भी तक जी पई आया हाँ तवा का एड़ा एड़ा सवाल पूछंदम एड़ा सवाल पूछंदम जी ताने जवाब ही न दे सको आई मां ता जो गानो
1: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by. अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाएं. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडिएंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम
0: सोना दिखा जो सबनीन का.

खूबसूरती नहीं आ चुकी होती है, तब आप लोगों के पास जाहिर सी बात है कोई ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो आपके चेहरे का ख्याल भी रखे, आपकी खूबसूरती भी बढ़ाता रहे और आपके चेहरे पर निखार भी लाए और आप लोगों के चेहरे की हिफाजत भी करता रहे। तो इन तमाम चीजों में एक ही चीज मेरे जहन में आ जाती है कि आप बस सिर्फ और सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर लीजिए। डी स्किन ब्यूटी क्रीम का जब आप यूज करेंगे ना, तो आप लोगों को ये फायदा हो जाएगा कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल के फौरन बाद आप लोगों को किसी और प्रोडक्ट लगाने की नीड ही नहीं पड़ेगी। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करते हैं बाबा तव्हां खे इलाही सारा फ़ाइदा मिली वेंदा। जीअं तव्हां ॾिसो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाया त तव्हां खे सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ ॿ रातिनि जे इस्तेमाल में रिज़ल्ट मिली वञे थो, ऐं तव्हां ॾिसो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां खे फेशियल वारो रिज़ल्ट ॾिए थी, यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे अंदरि जेतिरियूं बि चीज़ूं एड थियल आहिनि उहे सभु तव्हांजी स्किन ते जेको आहे न फेशियल वारो रिज़ल्ट ॾियनि थियूं। ऐं जॾहिं तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो था त तव्हांजे चेहरे ते ख़ूबसूरती सां गॾोगॾु तव्हांजे चेहरे जी हिफ़ाज़त बि थींदी रहंदी। तव्हांजी हर स्किन जे लाइ आहे ऐं तव्हां हर मौसम में लॻाए सघो था। ऐं मज़ीद जी ॻाल्हि त तव्हां सभु माण्हू लॻायो, मर्द मायूं हर कोई लॻाए सघे थो डी स्किन ब्यूटी क्रीम। तव्हां बाबा इन्हनि चीज़ुनि खां बचो जेके ॾिसंदा आहियो अॼुकल्ह मर्द ईअं वञो रोड खां त मर्द जेको आहे सैलून में वेठा हूंदा आहिनि, मल सल लॻी पई हूंदी अथनि ऐं ख़बर नाहे उहे अलाए कहिड़ा कहिड़ा प्रोडक्ट तव्हांजे चेहरे ते लॻाईंदा आहिनि। इन्हनि चीज़ुनि खां थोरो बचो बाबा, इहे बहुत अनहाइजीनिक सीन वाला जो न वो हो जाती है सिचुएशन। तो आप ऐसा कीजिए, घर बैठिए सुकून से रिलैक्सिंग माहौल बनाइए अपने लिए। रात के टाइम जब आप सोने लगे तो आप ऐसा कीजिए, डी स्किन फेस वॉश से अपना फेस वॉश कीजिए, अच्छे से चेहरे को क्लीन कीजिए, क्योंकि डी स्किन का जो फेस वॉश है ना, ये बड़ा ही जबरदस्त फेस वॉश है। ये आपकी स्किन के अंदर तक जाता है, आपके चेहरे को डीपली क्लीन करता है, क्योंकि डी स्किन फेस वॉश के अंदर हाइलोरोनिक एसिड सीरम जो है ना वो एड किया गया। ये जो हाइलोरोनिक एसिड सीरम है ना, इसकी एडिशन ही कमाल की है कि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। ये भी आप हर स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, फेस वॉश की बात कर रही हूँ। और फेस वॉश जो है ना डी स्किन का, ये आप हर उम्र में इस्तेमाल कर सकते हैं। वाला सीन नहीं है कि आप टीनेजर होंगे तभी लगाएंगे, नहीं, डी स्किन का फेस वॉश आप सब लोग लगा सकते हैं। आप भी लगाइए सब लगाइए। एंड डी स्किन जो फेस वॉश जेको आहे तव्हांजी स्किन खे हाइड्रेट रखंदो आहे, मॉइस्चराइज रखंदो आहे, हाणे ख़ासि करे सर्दियूं अचनि पई त तव्हांजी स्किन काफ़ी ड्राई थी वेंदी आहे। त जिन माण्हुनि जी स्किन ड्राई थी वेंदी आहे उन्हनि खे त ॾाढी नीड आहे। बाबा तव्हां डी स्किन जो फेस वॉश लॻाए पंहिंजी स्किन खे हाइड्रेट रखो, ऐं उन खां पोइ फेस वॉश करे वठो, तव्हां सफ़ा सही फेस वॉश कयो, राजे टाइम ते फेस वॉश लाज़मी कजो, ऐं पोइ चेहरे खे सुकाए पोइ तव्हां चङे तरीक़े सां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे छॾियो। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां ईअं पंहिंजे चेहरे ते लॻाईंदा जे क्रीम बाबा थोरी तव्हांजे चेहरे ते नज़र अचे, छो त ईअं कुझु माण्हू हूंदा आहिनि बसि ईअं लॻाए करे वरी मसाज करण में शुरू थी वेंदा आहिनि। बाबा नाइट क्रीम खे मसाज न कबो आहे, नाइट क्रीम सिर्फ़ प्यार सां सुकून सां लॻाए तव्हां सुम्ही पओ, सॼो कमु पाण ई कंदी आहे। तव्हांजो कमु आहे सिर्फ़ लॻाइणो, जेको तव्हां लॻाईंदा सही आहे, क्रीम लॻाए करे सुकून सां सुम्ही पओ। ऐं सुबुह जो उथण खां पहिरीं कमु तव्हां इहो कयो त तव्हां पंहिंजो फेस वॉश करे अचो। फेस वॉश करण खां पोइ तव्हां ॾिसंदा पंहिंजे चेहरे खे आईने में त तव्हां चवंदा अए हए मज़ो अची वियो, एॾो भलो रिज़ल्ट पहिरीं चकर में लॻाइण खां ई तव्हांखे मिली वेंदो। त जॾहिं तव्हां ॿियो दफ़ो लॻाईंदा पोइ त सभु तव्हांखे परफेक्ट रिज़ल्ट मिली वेंदा। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कमाल आहे बाबा, हिक घर घर ताईं पहुचणु ज़रूरी आहे। डी स्किन ब्यूटी क्रीम घर घर जो माण्हू लॻाए सघे थो, हिकु हिकु घर में डी स्किन ब्यूटी क्रीम हुजे, जीअं असांखे ख़ुशी थिए त असांजा सुहिणा सुहिणा लिसनर जेके न उहे वधीक सुहिणा थी विया आहिनि। डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां लॻाए था कोन, मूंखे लाज़मी ॿुधाइजो, पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराईंदा रहो, ऐं जेके नंबर्स तव्हांखे ॿुधाया पिया नंबर ते तव्हां राबितो कंदा रहो। ठीकु हो गया, ओके।

हा बाबा मां तव्हांखे केतिरो ॿुधायां थी टी स्किन ब्यूटी क्रीम जे बारे में, का ॻाल्हि तव्हां बि समझी वञो। टी स्किन ब्यूटी क्रीम बसि पाण वञी परचेज करे अचो, छो त टी स्किन ब्यूटी क्रीम जा तव्हांखे इलाही सारा फ़ाइदा मिलंदा। मां जेतिरा ॿुधायां थी न, शायदि हुन खां डबल ते मिली सघनि था। सो तव्हां बि लॻायो ऐं सुञा थी वञो। फ़ाइज़ा हली आई अथव, चए थी छो मूड ख़राबु कयो अथई, हालांकि हुजे छो मूड ख़राबु कयो अथई।

मैसेजेस हैं आप लोगों के, और यहाँ पर हमारे साथ हैं फजीला, कहती है अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आरजे शहजादी सिस्टर सिद्रा मुस्कान, कैसी हो डियर स्वीटी। सलाम टू ऑल सिस्टर्स, ओके जी वालेकुम अस्सलाम, सभी की जानिब से आपको भी वेलकम एंड खुश आमदीद कहते हैं। और हमारे साथ है ये हवायू सिद्रा जी, 78 मोरी से राजा हमीरचंद, किशोर कुमार, हीरा भाई, असद अली, जावेद कुर्बान, समय जो प्ले फोजिया चले मां, कोशिश क्या थी, बिल्कुल तांजी पसंद जा गाना हलाइंदासी, पर तां टॉपिक ते गालायो नी, फकीर मोहम्मद पाक आर्मी पनो आखिर से हमारे साथ है। सिस्टर तमान जो खिलन डाढो वणंदो आहे, मोला खुश रखे तमागे, थैंक यू फकीर भा, तांजो मोहब्बतू आहे, तां प्रोग्राम में शामिल थिया। चाचो कहते हैं बेटा सिडो, मैंने FB पर टॉपिक आंसर दे दिया है, आप रीड कर लें, मिलकर आपका कॉमेंट तो हम जरूर रीड करेंगे, नहीं तो आप दोबारा ऐसा करें कॉपी पेस्ट कर लें। और ये हमारे साथ है दोबारा से चाचा जी, जी आप ऐसा करें यहाँ पर आप जो है ना वो जवाब सेंड कर दीजिए। अच्छा सागर न्यास चांदू भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, उलैड इस्लाम आदत, मुस्कान जी जादू नगर वो जाएगा, पूछने से पहले डी स्किन ब्यूटी क्रीम खरीद कर चेहरे पर लगा कर, हाँ जी आप लगा कर बैठे शायद ये कहना चाहते हैं। सागर न्यास चांदू भाई आपको वेलकम कहते हैं, और ऐसे ही आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाकर अपनी खूबसूरती में इजाफा लाते लाइए, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये क्वालिटी से कैसे मर्द हजरात खवातीन सभी लगा सकते हैं। कमेंट्स कुछ ऊपर चले गए हैं, तो यहाँ पर ये मुझे कमेंट नजर आ रहा है, न कराची में मूं वटि आहे स्टॉक डी स्किन ब्यूटी क्रीम खपे त हाज़िर चाचो, हाणे डी स्किन ब्यूटी क्रीम उन्हनि उन्हनि माण्हुनि खे ॾे थो जेके बाबा कराची में वञनि था पर उन्हनि खे नथी मिले जनरल स्टोर तां, त तव्हां चाचे वटां वठी अची सघो था डी स्किन ब्यूटी क्रीम, सही आहे चाचा। ॾियो हलवल केतिरा कार्टून वठी रखिया अथव, इरफान सियाल साहब कहते हैं गुड शो मैम, डी स्किन ब्यूटी क्रीम इज बेस्ट, जी सर जी वेलकम कहते हैं आपको। फहीम भाई कहते हैं कि माइक्रो बीट्स थोड़ा प्रोडक्ट्स में हूंदा आहिनि, हाँ अरे कहना क्या चाहते हो। लुबी कहती है अस्सलाम वालेकुम सिडर जानी, क्या हाल है, उम्मीद है ठीक ठाक होंगी, मैं भी ठीक ठाक हूँ और आपका शो सुन रही हूँ साथ साथ हूँ, नाइस शो, सलाम टू निदड़ी एंड मिस यू निदड़ी, कहाँ हो अज निदड़ी आहे पोस्ट ते वेठी आ, वैसे त बीमार हुई यदि सो इन जे करे कोन पई अची सघे। रमज़ान भाई हमारे साथ बहन सॉन्ग प्ले करो, अदा अज यो रोल उठायो आ जेको टॉपिक जो जवाब सही ॾींदो उन जो गानो हलायो वेंदो, सो तव्हां न ॾिनो आहे सवाल जो जवाब, इन जे करे तव्हांजो गानो मथां कोन हलाए सघो। सवाल मां तव्हां खां इहो पुछो त तव्हां मूंखे ॿुधायो त वाइटमिन ई बीट्स ऐं माइक्रो बीट्स जेकी आहिनि उहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे अंदरि एड थियल आहिनि, त इन्हनि जो छा कमु आहे, समझो था। अच्छा निदड़ी कहती है कि काम ये होता है कि फेस सॉफ्ट हो जाता है और स्किन प्यारी हो जाती है, मुखे हिकड़ी छोकरी सही जवाब दिनो है हिनमहिल ताईं, यानी कि तकरीबन पूरो प्रोग्राम थी चुको है ना, हिकड़ी छोकरी आ जे सही जवाब दिनो है, यो मां तव्हांखे ॿुधायां थी, उहा कहिड़ी छोकरी आहे उहो तव्हांखे थोरी देरि खां पोइ ॿुधाईंदसि, पर हाली अञा तव्हां वटि टाइम आहे तव्हां ॿुधायो मूंखे। और यासिन खान कहते हैं कि बस जियो करेस डी स्किन ब्यूटी क्रीम को, हाँ जी जियो करेस, तमाम भी लगाइंदा रहो, दर्दे दिल क्या बात है आपकी।

हाँ जी मिलन तो पूछी वटना सी दी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाई थी कौन निदड़ी कहती कि मेरी एक दोस्त थी बचपन में सितारा कारे वही हुआ हाने अधी अच्छा किशोर भाई तुम इलाही सारा कमेंट करी सजाएं हुए सब तांजे कमेंट पढ़ी चलो फराज डेहरी उसामा और फराज की तरफ से सलाम जी वालेकुम अस्सलाम और कहते हैं विटामिन ई बीट से खूबसूरती के लिए होते हैं अच्छा सही सही सही अच्छा मुगल उमरानी भाई भी हमारे साथ मौजूद है स्टिकर सेंड कर दिए बहुत शुक्रिया अदो चाहे तो अदा सही कह रहा है ऐसी बहाने सब सवाल पर बात तो करेंगे सवाल ते गाला है वो जरूरी ना है ना खामु के यो लगे तो ता सब मानो गौर सा बुदना ता बाबा प्रोडक्ट जे बारे में केडी केडी चीजों असा के बुधायो वनन थियो ये ना ता सुभानी वरी सदरा को प्रोडक्ट जे बारे में असा का सवाल पूछे जको असा के ना चे अई असा जो गानो ना हले गाने जे करे तो तमा कुछ भी करे सको ता सो इसीलिए ये रूल है कि अगर आप सवाल का जवाब सही देते हैं तो आपका गाना लगाया जाएगा खास करके तब तब जब मैं आप लोगों से प्रोडक्ट के बारे में पूछूं तो इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों गौर से सुनिएगा कि आपने प्रोडक्ट के बारे में जितनी भी बातें आपको बताती हूँ वो गौर से सुननी है गौर से सुननी ताकि आपको पता चले कि भाई क्या क्वालिटीज इन डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर अकबर जो लोग लगाते हैं उनको तो पता है कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने से कितने सारे फायदे मिल रहे हैं हमें बाकी जिन लोगों ने अभी तक नहीं लगाई है तो उनको भी पता चले कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने के कितने सारे फायदे मिल सकते हैं और हजार भाई हमारे साथ मौजूद वालेकुम अस्सलाम हजार भाई वफा शहजादो मक्सी भाई लाड़कानी खां सा के बुद्धि पयो थैंक यू वही भाई कहते अदा माइक्रो बीट्स का काम स्क्रब रग अरे भाई स्क्रब वरी काड़ा आची हुई स्क्रब जो तो मैं नालो ही न वठंदी आया आई उल्टू तव्हांखे मना कंदी आहियां त ईअं रगड़ींदा न कयो स्किन खे क्रीम लॻाए करे टॉपिक माइक्रो बीट्स स्किन को

ओके जी, आपने तो पूरा ये पैराग्राफ भेज दिया है मुझे चैट जीपीटी से पूछ के. अच्छा है, बहुत बढ़िया, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए. क्योंकि हमारे काम की तो एक भी बात नहीं थी. अजू भाई एकड़ो मिरेकल थी वियो आ त फई भाई जा सब दुका जके है ना वे फेल थी वया है. यासीन खंड चौथा त असा भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाए था. बिल्कुल बाबा तां लगाइंदा रहो. हाँ निदड़ी मां पाणी या चीज दिसा पई मके खिल अची पई पर असा थोड़ो कंट्रोल कयो आ. मोहम्मद समान कहते बुआ जी आप

मोहम्मद जमान भाई, आप ऐसा किया करें कि आप दी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करके मुझे बताएं कि आपको रिजल्ट्स कैसे मिल रहे हैं, ठीक है? ऐसे में एडी मुश्किल में विझी छॾी हाणे रीड भी कजा कॉमेंट मुंह पढ़ियो, पर हुन में का कम जी ॻाल्हि कोन हुई मुंहिंजे लाइ।

ढोलो तव्हांखे बि मिले त हुन खां पुछजो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाई अथई ढोला कोन ढोलो अगरि चवे त न कोन लॻाई आहे ढोले खे चइजो वञ ढोला वठी अचो हाणे जो हाणे ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कर छो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे इस्तेमाल खां फौरन बाद तव्हांखे मिलंदी उहा ख़ूबसूरती जेका तव्हांखे कॾहिं बि शायदि कोन मिली आहे ऐं तव्हां ॾिसी पंहिंजो चहिरो चवंदा वाह साईं वाह ही त कमाल थी वियो असां पहिरियां छो न पिया वठूं डी स्किन ब्यूटी क्रीम और हमारे साथी साजिद हुसैन सूमरो कहते हैं सलाम सिद्रा जी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगायो आहे गुड आहे फ्रॉम DIG ऑफिस लाड़काना से अहमद मुगल का गाना तांके सुभाणे बुधराईंदासीं तांजे पसंद जा गाना किशोर भाई कहते अदा आ तुझी आवाज में एतरो मगन हुंदो आहे तो केड़ा केड़ा फायदा रसींदो खबर ही ना पवंदे ॾिस ॾिस ॾिस

अरे भाई तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जॾहिं लॻाईंदा त सभु कम डी स्किन ब्यूटी क्रीम ई कंदी, समझो था। तव्हां खूबसूरत थी वेंदा, सुहिणा थी वेंदा, प्यार प्यार थी वेंदा। हांजी खिली पोइ डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻायो। बाक़ी आहे सोचण वारी ॻाल्हि आहे, ईअं छो चवंदा आहिनि खंड जो जहाज ॿुॾियो अथई, खंड जो ई जहाज छो ॿुॾंदो आहे? सोचने वाली बात है। बाकी चीजों के बारे में क्यों नहीं बात

अच्छा महेश सर साहब वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? ठीक ठाक है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम कब इस्तेमाल कर रहे हैं? अच्छा अॼु मां अव्हां सां बिल्कुलु उहा कार कई आहे तव्हांखे सॼो

0: छोकिरी जो टाइम जेको आहे सफ़ा तेज़ी सां गुज़रंदो वञे थो, वही टॉपिक जो जवाब अगरि मां तव्हांखे ॿुधायां त टॉपिक जो जवाब बिल्कुलु मां डेली तव्हांखे नबी न हज़ार दफ़ा त लाज़मी ॿुधाईंदी हुयमि, हज़ार भाउ खां पुछिजो। अगरि असां हिते ॻाल्हि कयूं था डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे अंदरि जेको वाइटमिन ई बीट्स आहे ऐं माइक्रो बीट्स आहे न, हिकिड़ा जेके माइक्रो हूंदा आहिनि, माइक्रो बीट्स जेके सफ़ा नंढा हूंदा आहिनि, जेके ख़ासि करे फेशियल जे अंदरि एड थियल हूंदा आहिनि, ऐं उहे इन लाइ एड थियल हूंदा आहिनि जीअं फेशियल जो जेका रिज़ल्ट हूंदो आहे ॾह गुना वधी वेंदी आहे, ऐं ॿिया नंढा नंढा बीट्स हूंदा आहिनि जेके वरी स्क्रब जे अंदरि एड थियल हूंदा आहिनि। सो उहे
1: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.

0: क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अरे न खुश्क और बेरोनों की स्किन और इन्हें जलाए छा डैमेज और डल स्किन के कयो आउट, पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, जहमे आहिन चार अंजू खूबियों ऐ कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे ऐ चामरन जो खूबियो जिल्द में फाइन लाइंस ऐ झुरन के घट कर ऐ रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिम बीहन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम ऐ ब्राइट उन सा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जै जी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत ओ यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज़,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

दोपहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से गडियल कौमन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस की मुलाकात, गडियल दिलचस्पी, इलाकई सिक्योरिटी सूरत हाल, आलमी अमुन सलामती वाले मामलों से गालू, वालारल कश्मीर तकरार, भारत पारा सिंतास मुआदे के अल्तवा में रखण, अफगानिस्तान में दहशतगर्दी वाले मामलों से पिण गाल बोल कई वही। ISPR मूजिब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आलमी अमुन लाए पाकिस्तान जो अजम वरजाइंदे, गडियल कौमन के अमुन मिशन्स में पाकिस्तान के किरदार ए कुर्बानन के उजागर किया। एंटोनियो गुतरेस दहशतगर्दी खिलाफ जंग ए अमुन मिशन्स में पाकिस्तान के कुर्बानन के भेटा पेश की।
1: किसी सूरत भी रियासत को यरगमाल बना के सियासी मुतालबात को मनवाने का हथकंडा जो है वो नहीं बनने दिया जाएगा। PTI की जब से शनाख्त मिली तो उसके बाद से उनका एक ही जो है वो एजेंडा और मकसद रहा है, सियासी रवादारी को खत्म करके अदम बर्दाश्त, नफरत, गाली गलोच का कल्चर जो है उसे सियासत में दाखिल किया जाए। ये किसी सूरत भी ना कानून, ना आईन, ना सियासी अखलाकियात इस बात की इजाजत नहीं देती।

0: तू ना मेरा हेटर, तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन्स और एवोकाडो की भरपूर खूबियां, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: out of my head already.
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 9 p.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by Super White Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
4: निराकरात की इस पक्ष में किसी सूरत भी रियासत को यर्गमाल बना के सियासी मुतालबात को मनवाने का हथकंडा जो है वो नहीं बनने दिया जाए। पीटीआई की जब से शनाख्त मिली तो उसके बाद से उनका एक ही जो है वो एजेंडा और मकसद रहा है, सियासी रवादारी को खत्म करके अदम बर्दाश्त, नफरत, गाली गलोच का कल्चर जो है उसे सियासत में दाखिल किया जाए। ये किसी सूरत भी ना कानून, ना आईन, ना सियासी अखलाकियात इस बात की इजाजत नहीं देती।
5: रियासत के यर्गमाल बनाए को भी मुतालबो नथो मंजराए सकजे, जाती एजेंडा के कौमी मफाद दे तरजीह न डिनी वजे। हुकूमत गालन जा दर बंद नाहन कया, पीटीआई जाती मफादन के पासे ते करे मसलन जे हल लाए अगते अचे। वजीर आजम जे सलाहकार राणा सनाउल्ला चयो आहे त पीटीआई इस्लामाबाद ते चढ़ाई जी कोशिश कर रही आहे। लॉन्ग मार्च लाए केपीए जा सब वसीला इस्तेमाल कया पे वजन। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी थी है, अफगान पॉलिसी ते पीटीआई का सवाए समूरी कौम मुतफिक है।
6: पीटीआई चेयरमैन हुकूमत का गैर मशहूर गालियों करने जो मुतालबो करे छो। बैरिस्टर गोहर है तो जितो वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंसिस से लगा पे वे एतरो वक्त गालियों क्यों वन हाँ तो मसलो हल थी वे हाँ। इस्लामाबाद असो है लॉन्ग मार्च जरूर इस्लामाबाद इंदो, गालियों बीहर थे घुर्जन, ब्रेक न लगन घुर्जे। अपोजिशन लीडर महमूद खान चकजई है तो पीटीआई बानी से मुलाकात कर बिना गालियों न थी दूँ, हुकूमत मसले जो हल चाहे थी तो बानी से मुलाकात कराए।
5: खैबर पख्तूनख्वा में वधंदड़ दहशतगर्दी के हर कीमत ते रोकणो पवंदो। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम जो दहशतगर्दी खिलाफ कुर्बानियों साराह जोगियो आहिन। ख्वाहिश है तो केपी बे मुल्क के बेन सूबन जिया तरक्की करे। वजीर आजम शहबाज शरीफ जो वफाकी वजीर अमीर मुकाम से मुलाकात दौरान गालियो। वफाकी वजीर अमीर मुकाम कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल से वजीर आजम के ब्रीफिंग डिनी। वजीर आजम की कश्मीर ए गिलगित बल्तिस्तान में अवामी भलाई वारा कदम जारी रखने की हिदायत।
6: पीपल्स पार्टी सदाई जाती मफाद के कौमी मफाद तरजीह दिनी है। केपी के गवर्नर जो अमन अमान बाबत इजलास करण भी गैर आइनी है। केपी के वे वजीर सुहेल आफरीदी काबीना के खिताब कदे है तो पीपल्स पार्टी माजी में भी गलत किरदार अदा करती रही है। गवर्नर पारा इजलास की सदारत करण आइन ए जमहूरियत हमलो है। केपी पुलिस

0: फील्ड मार्शल सां गॾियल कमांड जे सेक्रेटरी जनरल जी मुलाकात, गॾियल दिलचस्पी, इलाक़ाई सिक्योरिटी सूरतहाल, आलमी अमन।
1: ईरान जी हुकूमत इंतज़ाम केरु हलाए रहियो आहे कंहिंखे का बि ख़बर न आहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त ईरान जे ॿियो नंबर क़यादत बि ख़तम थी वई आहे। हाणे तेहरान ते कंहिंजी हुकूमत खे का ख़बर न आहे। परॾेही वज़ीर मार्को रुबियो चयो आहे त ईरान एटमी प्रोग्राम बाबति माहिद जा घणा मुखिया ज़ाया कया आहिनि। हाणे ईरानी मईशत मुकमल तौर ते सवाल जो शिकार आहे। अपना हुरमस मां हिन वक़्तु जंग खां पहिरीं जेतिरो तेल गुज़री रहियो आहे।
0: पाकिस्तान जा सऊदी अरब सां लाॻापा पुराणा आहिनि। पाक फ़ौज जा दस्ता ॾहाकनि खां सऊदी अरब में मुक़ररु आहिनि। अमरीकी टीवीअ खे ॾिनल इंटरव्यू में पाक फ़ौज जे तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी जो चवणु हो त केतिरनि ई ॾहाकनि खां पाकिस्तान ऐं सऊदी अरब में दिफ़ाई लाॻापा आहिनि। मका मुआदे समेत पाकिस्तानी दस्ता मुख़्तलिफ़ डोमेन्स में सऊदी अरब में मुक़ररु थियल आहिनि। सऊदीअ में पाक फ़ौज जी मुक़ररी नओं अमल नाहे।
1: वज़ीर आज़म जी सदारत हेठि रेलवेज़ में सुधारनि बाबति इजलास। शहबाज शरीफ जी ML1 ते कम तेज़ करण ऐं रेलवेज़ में कारपोरेट तर्ज़ जा सुधारा आणण जी हिदायत। ML1 जी तामीर लाइ कमर्शियल मनसूबनि ज़रिए बैंक्स खां फंडिंग वठण जी मंज़ूरी ॾिनी वई। शहबाज शरीफ चयो त रेलवे जी कमर्शियल ज़मीन खे इस्तेमालु करे रेलवे खे बहितर बणाए सघिजे थो। इजलास खे ब्रीफिंग में ॿुधायो वियो त ML1 खे चार हिसनि में विरिहायो वियो आहे। आलमी फंडिंग सां गॾु मक़ामी फंडिंग ते बि कमु जारी आहे।
0: कणक जी दस्तियाबी ऐं अटे जे अघनि बाबति वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जी सदारत हेठि आला सतही इजलास। वाधू कणक मार्केट में फराहम करे अटे जी क़ीमतुनि में इस्तेहकाम आणण जो फ़ैसिलो। 15 अक्टूबर खां सरकारी कणक जारी करण जी बि मंज़ूरी। मुराद अली शाह चयो त 100 किलोग्राम कणक जी ॿोरी 12,500 रुपियनि जे हिसाब सां जारी कई वञे। कणक जारी करण जो मक़सदु अटे जी क़ीमतुनि खे मुस्तहकम रखणु आहे।
1: मार्शल सैयद आसिम मुनीर सां बेलारूस जे आला सतही वफ़द जी मुलाक़ात। गॾियल दिलचस्पी वारनि मामलनि में तरफ़ी दफ़ाई सहकार ते ॻाल्हियूं। तब्दील थींदड़ इलाक़ाई ऐं आलमी सिक्योरिटी सूरतहाल ते ख़्यालनि जी ॾे वठि। ISPR मूजिब फील्ड मार्शल बेलारूस सां दिफ़ाई सहकार वधीक मज़बूत करण वारो पाकिस्तान जो अज़म वरिजायो। बेलारूस जे वफ़द दिफ़ाई ऐं सिक्योरिटी सहकार मज़बूत पाइण जे हवाले सां मस्बत रद अमल जो इज़हार कयो। आलमी अमन लाइ पाकिस्तान जे किरदार जी बि वाखाण कई।
0: ख़ैबर पख़्तूनख़्वा दहशतगर्दीअ जो शिकार आहे।

0: सोहेल आफरीदी सूबे ते ध्यान ॾियण बदिरां सियासी एजेंडा ते हली रहियो आहे। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन चयो आहे त सोहेल आफरीदी वॾो वज़ीर थी ॾेखारे, इल्ज़ाम हणण बदिरां सूबे जी ख़राब थींदड़ सूरतहाल जो जवाब ॾिए।
1: पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलाल भुट्टो सरदारी आला अदलिया में जजिस जी मुकररी बारे फोरम जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो मेंबर नामज़द। ज़रियन मौजिब बिलाल भुट्टो सरदारी के पीपल्स पार्टी जे सेनेटर फारूक एच नाइक जी जाए ते नामज़द कयो वियो। नून लीग जे एमएनए आफ़ताब शेख ऐं कमीशन जी मेंबरशिप तां इस्तीफ़ा ॾिनी आहे।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News,
3: brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। Super White Oil Free Beauty Cream के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
4: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: कराची का कश्मोर किंजर का कारुंजर ताई स्वर्णी सिंधवासिन के आबिद चौहान जो सिक भरियो सलाम कबूल पवे।

GFM नेटवर्क ऐं दिलि जी ॻाल्हि जे ॿुधंदड़नि सभिनी मानायतनि महबूब शख़्सियतनि दिलरुबा दोस्तनि पिणी प्यारनि खे वेलकम भलीकार ख़ुशामदीद।

जी दोस्तों, तो आइए मिलके सुनते हैं गुलाम अली खान साहब की खूबसूरत प्यार भरी आवाज में ये प्यारा सा गीत, इतना टूटा हूं कि छूने से बिखर जाऊंगा, अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा।

जी दोस्तों, प्रोग्राम दिल जी गल से कर रहा हूं अब चौहान आया बुधी रहे हो जीए एफएम नेटवर्क। दोस्तों आफ्टर ब्रेक असा अवा जो कॉल्स भी खणदा से अवा सा कचहरी भी कंदा से खोड़ सारू दिल जो गालियों कंदा से हियर वक्त थी रहो आए एकड़ी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खा वन खा अग में जिन दोस्तों असा के न्यूली ट्यून कियो आ उनन के पंजो लाइव कॉलिंग नंबर बुधाई दोला आफ्टर ब्रेक असा कॉल अटेंड कंदा से 03000113488 तपोए मिलो था वापस एकड़ी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खा पोए ब्रेक खा पो तो पोए बुधन न विसारींदा दिल जी गाल अब चौहान सागर जी एफ एम नेटवर्क।

0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: अजरक के रंगों से रंगी
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी
1: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
2: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: वेलकम बैक प्रोग्राम दिल जी गल से गदा हूं है आबिद चौहान है मैं बुधी रहा हूं GAFM नेटवर्क जी दोस्तों कोशिश कंदा से एक अद कॉल शामिल क्यों उन खापो असा डेफिनेटली न्यूज ब्रेक ना लाजमन वेंदा से असा वहां जे कॉल जे करे थोरो रहजी आसे एनीवेज बई शयूं लाजमन अवां बि ऐं असांजे प्रोग्राम जो पैटर्न बि त पोइ कॉल शामिल कयूं था अस्सलाम वालेकुम केर साईं किथां खां साईं मुंहिंजा वेलकम बलीकार ख़ुशि आमदीद पहिरां कहिड़ा हालनि ख़ुशि आहियो दुआऊं सर अलाह जा एहसान
1: अलाह तव्हांखे ख़ुशि रखंदो आबाद हूंदव दिलि जी ॻाल्हियूं इहे आहिनि त बाबा तालीम हासिल कयो
0: बिल्कुलु
1: सुठे कजे हिन में ज्ञान में अचो
0: बिल्कुलु
1: तालीम जेका आहे इंसान जो भलियो हिकिड़ो सुधारो बि आहे ऐं सुहिणो बि आहे
0: बिल्कुलु बिल्कुलु बेशक
1: नहीं बाबा
0: पूरी थे माई भाॻी बि शामिल कयूं था पोइ हिकु पछाड़ी में शामिल
1: थींदा
0: वॾी महिरबानी कुर्ब लख लाइ
1: महिरबानी।

0: ब्रेक ते वञण खां अॻु में हिकु कॉल असां ॿी अटेंड कंदासीं, पर उमेद त उहा शॉर्ट कॉल हूंदी. जेको बि दोस्त आहे जंहिंजो नंबर ख़ुशि नसीब जो रिसीव थी रहियो आहे, त काइंडली उहा शॉर्ट ई हुजे कॉल. अस्सलाम वालेकुम, केर साईं किथां खां? वालेकुम सलाम. छा चवण चाहींदो? बिल्कुल साईं,
1: दुनिया में क्या हो जाए पर हमारे अबे जेडी खेल
0: बेशक साईं, बेशक
1: दोस्तों का नाव
0: नाव शामिल कियो, नाव शामिल कियो
1: पांच जो ना तो आगे ने के कलर ख्याल आप जो
0: जी अदा
1: वो जो प्यार आज को सही ख्याल खैर तो
0: जी
1: हेलो चाचा ने राम आरी दो
0: जी
1: एक जो हाल से अब आर करो
0: जी
1: बाव शेर कंबाद
0: जी
1: वो आप चुनान गए टाइम के
0: लखा थोड़ा सही बड़ी मेहरबानी
1: अल्लाह से दा थैंक यू तेरा सा जो तू सॉन्ग आप के प्यार सा पाई वो जरा ता जो बड़ी मेहरबानी की ली
0: जी बुधाए छियो
1: ममता अल्लाह शरी रुता याद कर जी जी जी
0: जी कोशिश कंदा से ममता अल्लाह शरी जो संगीत लाजमी शामिल
1: फर्स्ट टाइम कॉल लगी है तकरीब जी तो
0: थैंक यू सर कुर्ब लख लाइक ओके अल्लाह हाफिज़. बिल्कुल दोस्तों, इल्म अदब आर्ट ऐं सूफ़ीज़म सकाफ़त कल्चर इन्हनि सभिनीनि शयुनि खे जेकॾहिं असांखे ज़िंदा रखणो आहे त तालीम ॾांहुं असांखे अॻभरो थियणो पवंदो ऐं जदीद साइंस टेक्नोलॉजी जे दौर में पेर पाइणो पवंदो. वक़्तु थियो आहे ऐं न्यूज़ ब्रेक जो, ऐं न्यूज़ ब्रेक खां पोइ शॉर्ट कमर्शल ब्रेक्स आहिनि कुझु, ऐं शॉर्ट कमर्शल ऐं न्यूज़ ब्रेक खां पोइ वापसि वरी वरंदासीं. ॿुधंदा रहो GFM नेटवर्क.

0: सचल की सरमस्त धरती,
1: फातिये मेहरान, सिंध की एक और पहचान,
0: GAFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: It's 10 p.m. This time check is brought to you by
3: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
4: खबर सियासी हुजे या समाजी,
5: मजहबी हुजे या सरकारी,
4: खबर शहर जी हुजे या गोठ जी,
5: सखर डिवीजन जी आवाम जो खबरों
4: जी, सखर न्यूज बुलेटिन में
5: रोजाना रात 9-10 वगे GAFM 88 नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: Brought to you by Super White Rice Collagen Beauty Cream. A project by Aksa Cosmetics Pakistan.
2: लॻायो पियो वञे एतिरो वक़्तु ॻाल्हियूं कयूं वञनि हा त मसलो हल थी वञे हा इस्लामाबाद असांजो आहे लांगबाद ज़रूरु इस्लामाबाद थींदो ॻाल्हियूं बीहर थियणु घुरिजनि ब्रेक न लॻणु घुरिजे अपोज़िशन लीडर महमूद ख़ान चकसई चयो आहे त पीटीआई बानी सां मुलाक़ात करण बिना ॻाल्हियूं न थींदियूं हुकूमत मसइले जो हल चाहे थी त बानी सां मुलाक़ात कराए

0: जेयूआई सरबरा मौलाना फजल रहमान से हुकूमत वफद की मुलाकात। स्पीकर सरदार रियाज सादिक राना सनाउल्ला वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की मुलाकात। हुकूमत वफद मौलाना फजल रहमान कपुलशन से थियल गाडियन बाबत आगाह किया। मौलाना फजल रहमान जो हुकूमत के केपी में गवर्नर आज या एमरजेंसी न लगन जो मशवरो सरदार रियाज सादिक है तो उम्मीद ते दुनिया कायम है। साथियों से राबता जारी है, इंशाल्लाह जरूर रस्तो न निकर।
1: फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बेलारूस के आला सतही वफद की मुलाकात। गडियल दिलचस्पी वाले मामलों बेतरफी दिफाई सहकार से गाल तब्दील इलाकई ए आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल से भी ख्याल की डे वठ। आईएसपीआर मौजि फील्ड मार्शल बेलारूस से दिफाई सहकार मजबूत करने वो पाकिस्तान जो अजम वरजायो। बेलारूस के वफद दिफाई ए सिक्योरिटी सहकार मजबूत बढ़ाने के हवाले से मस्बत रद्द अमल जो इजहार कर आलमी अमन लाय पाकिस्तान के किरदार की भी वाखाण कई पी।
0: ईरान की हुकूमत इंतजाम केर हलाए रो है कंखे का खबर ना है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है तो ईरान के बो नंबर क्यादत भी खत्म थी वही है। हाँ तेहरान से कंकी हुकूमत के का खबर ना है। वड़े वजीर मार्को रुपे है तो ईरान एटमी प्रोग्राम बाबत माहितौर जहाँ घना मौकिया जया क्या हाँ ईरानी मीशत मुकम्मल तौर से सवाल शिकार है। आपटा हरमुस में इन वक्त जंग का पैं जो तेल गुजरी रो है।
1: पाकिस्तान जा सऊदी अरब से लागापा पुराना आन पाक फौज दस्ता डहाकन का सऊदी अरब में मुकर्र आन। अमेरिकी टीवी के डल इंटरव्यू में पाक फौज के तर्जमान लेफ्टिनेंट जनरल अमन शरीफ चौधरी जो चवण हो तो केतर डहाकन का पाकिस्तान ए सऊदी अरब में दिफाई लागापा आन। मका दिफाई मुआदे समेत पाकिस्तानी दस्ता मुख्तलिफ डोमेंट्स में सऊदी अरब में मुकर्र थियल आन। सऊदी में पाक फौज की मुकर्री नौ अमल ना है।
0: परडेही वजीर डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन राशिद पाकिस्तान के दौरे से इस्लामाबाद पहुंची वो। पहरें परडेही वजीर इस्लामाबाद में सियासी ए अस्करी क्यादत से मुलाकात कौ। मुलाकात दौरान बेतरफन लागापन समेत खिते की सूरत हाल से तफसीली गाल कई वेंद।
1: कणक की दस्तियाबी ए अटे के अघन बाबत वे वजीर सैयद मुराद अली शाह सदारत हेठ आला सतही इजलास। वादू कणक मार्केट में फराम कर अटे की कीमतों में इस्तेहकाम आणण जो फैसलो। 15 अक्टूबर का सरकारी कणक जारी करण की भी मंजूरी। मुराद अली शाह 100 किलोग्राम कणक की बोरी 12,500 रुपये के हिसाब से जारी कई वे। कणक जारी करण जो मकसद अटे की कीमतों के मुस्तहकम रखना है।
0: केपी दहशतगर्दी जो शिकार है सोल अफरीदी सूबे से ध्यान दियण बदरा सियासी एजेंडा से हली रो है। सिंध के सीनियर वजीर शजीन लामेमन है तो सोल अफरीदी वो वजीर थी डेखारे इल्जाम हण बदर सूबे की खराब थन्दड़ सूरत जो जवाब दे।
1: पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आला अदलिया में जजेस जी मुकर्री वाले फोरम जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो मेंबर नामजद। जरियन मौजिब बिलावल भुट्टो के पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक एच नायक की जाय से नामजद किया वो है। नू लीग के MNA आफ्ताब शेख बे कमीशन की मेंबरशिप से इस्तीफा दिनी हुई है।
0: सिंधाबाद का इतिहाद शुगर मिल्स के वक्त सिर हलायण ए सी जी कैनाल समेत बिया फ्लड के कैनाल फौरी तौर बंद करण जो मुतालबो कर छो। कणक जो अघ 5,500 रुपया फी मण ए कमंद जो अघ 650 रुपया फी मण मुकर करण जो मुतालबो। आबादकार अगवाण हुकूमत पारा इन वक्त सारियन जो घट अघ आबादकारन की माशी कतल बराबर है।

0: をもって毒を制すじゃ。天才
1: 青山女子、
2: 一つプラン B を提案してもよろしいですか。

0: 何時超えてる。
1: 心配するな、奴はゴジラじゃない。
2: हॉलीवुड फिल्म गार्डिजिला माइनस जीरो की झलक बदल ट्रेलर जारी। फिल्म के 6 नवंबर से समूरी दुनिया में रिलीज किया वो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए Super White Oil Free Beauty Cream के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिपचिपके चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान
2: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है
3: सुनते रहो GFM 90.8